सतगुर प्रसाद नंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सेठी मन बनिया राग रतन परवार परिया शब्द का बंडिया सतगुरु का गावो हरि के

करनाल रहो तो मन मेरे दुख सब सारना, अंगीकार हो कर तेरा सब सारना। सबना गल्ला समरत स्वामी सुख मनो विसारे, करे नानक मन मेरे रहो। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरे सब जगह।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी के फतेह श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याय। विरांगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया

दान केश दान रहत दान भवेक दान विसा दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया चंडे बंगे जुग जुग टल धर्म का जय का।

नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा।

आपके बदला तेरे को तबसरा पेश कर दो ऐप हो कुछ फिल्में गीत खास खास कर प्रोग्राम जाकर मैं शुरू में दियो ये तक प्रोग्राम जी तफसील तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधिरा यह रचो भगत कराम साहब जन जी मिठड़े आवास में कलाम बुधूँ।

प्रभुगत कलाम जंहिं जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॾिनो ई आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे. हींअर पेश आहे तबसरो. 5 अक्टूबर 2026 ते स्विस जो सदर ग्वे परमेलिन नई दिल्ली भारत में टिनि ॾींहनि जी रस्मी यात्रा ते साणस गॾु अज़मर अमलदारनि ऐं वापारी अॻवाननि जो हिकु मेड़ हो. रोड अमदरफत ऐं हाईवे जे सूबाई वज़ीर अजय तमता हवाई अॾे ते संदसि आजियां कई. यात्रा ते आयल मेड़ जी राष्ट्रपति भवन जे फोर कोर्ट में रस्मी आजियां कई वई. सदर द्रौपदी मुर्मू ऐं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्विस सदर जी आजियां कई ऐं खेसि टिनि फ़ौजी सेवाउनि जी सेवाउनि पारां गार्ड ऑफ ऑनर पिण पेश कयो वियो. रस्मी आजियां खां पोइ श्री परमेलिन चयो त संदसि यात्रा घणी अहमियत रखे थी ऐं ॿिन्ही भारत ऐं स्विट्ज़रलैंड खे वजह मैसर थी कराए त पंहिंजनि लाॻापनि खे अञा अॻिते वधाइनि. हुन चयो त ॿिन्ही मुल्कनि मंझि लाॻापा वंडियल रहती क़दरनि अक़ीदे ऐं बाहिमी इज़त ते आधार था रखनि. स्विस सदर चयो त संदसि यात्रा तरक़ीअ खे वधीक वेझनि वसीअ ऐं लंबे अरसे जी भाईवारी खे वधीक पुख़्तो बणाईंदी. प्रधानमंत्री मोदी ऐं स्विस सदर परमेलिन पाण में घणनि ई मुदनि ते बाहिमी लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं. तंहिं में अची थो वञे वापार ऐं सीड़प में सहकार खे वधाइण, ख़ासि करे भारत ई एफ टी ए

PA जिमोज़ुए जिथे सुसनिन संस वडी मेडो वापारी भाईवार ए सीड़प कलर भाईवार आहे बनी धरन धरन खेत्रन में सहकारते कार्य गयो तै मेजी वने बुनियादी ढांचो साइंस टेक्नोलॉजी ए इनोवेशन दवाओ सेहत सेवा तैलीम ए स्किल्स मोबिलिटी बचाव न्यूक्लियर तवानाई स्पेस माहौल ए उन समासेदार मौजू सकाफत ए मानन जी मानन सा मटासटा उन्हें पाण में नवन खेत्रन में वजन ते गालियों के जड़ोक मैन्युफैक्चरिंग इन अलावा तज इंजीनियरिंग जा पुर्जा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैस वैस में जेके बया मदास हुआ आयुर्वेद ए योग जेके में स्विट्जरलैंड में तमाम घणा मशहूर आहिनि बिन्ही अगवानन घणनि इलाक़ाई ऐं आलमी वाधारनि ते पिण वीचारनि जी मट सट कई प्रधानमंत्री मोदी यात्रा ते आयल स्विट्जरलैंड सदर जी इज़त में हिकु शाही दावत पिण ॾिनी भारत ऐं स्विट्जरलैंड भाइमी ॻाल्हियुनि खां पोइ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विस सदर गॉय परमिलन मंच भाइमी ॻाल्हियुनि खां पोइ पंज इकरारनामनि ते सही कयूं सही इकरारनामा आहिनि माइग्रेशन ऐं मोबिलिटी भाईवारी इन खां अलावा नौजवान माइरनि जी मट सट अंदर फतेह टेक्नोलॉजीज मोबिलिटी सिस्टम ए बुनियादी ढांचे में सहकार के वधायण इन अलावा साइंस ए टेक्नोलॉजी के खाते स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन मंझ लेटर ऑफ इंटेंट इन अलावा इनोवेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ए व्यापार में सहकार ते अरेंजमेंट के सही करण एक गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी स्विस सदर जी तारीफ कई जो भारत स्विट्जरलैंड लागापन के अगते वधाए वियो आहे हुन चयो त भारत इतिहासिक व्यापार ए इक्तसादी भाईवारी करार के यूरोपियन यूनियन आज़ाद व्यापार एसोसिएशन मुल्कनि सां गुज़िरियल साल सही करे चुको आहे श्री मोदी ध्यान च कयो त इहो इकरारनामो भारत जो पहिरियों आज़ाद व्यापार इकरारनामो आहे यूरोपियन इकोनॉमिक ब्लॉक सां मुचाइप हुन में अभिलाषाई ढांचो आहे सीड़प इनोवेशन रोज़गार ऐं गडि॒यल खु़शहाली जे लाइ प्रधानमंत्री रोशनी कंदो त इन करार सां भारत जो मक़सदु आहे 100 बिलियन अमरीकी डॉलर जी सीड़प भारत में आणणु इन खां अलावा ईंदड़नि 15 सालनि में 10 लख सिधा रोज़गार पैदा करणु श्री मोदी चयो त भारत ऐं स्विट्जरलैंड घणेई अहम फ़ैसिला कया आहिनि जंहिं सां भारतीय रवानगी खे स्विट्जरलैंड में सिगरनि जे मार्केट जो लंघ मिलंदो इन खां अलावा ॿिन्ही मुल्कनि मंझि सीड़प खे हिती मिलंदी हुन चयो त इन वाद सां भारतीय ज़रिए शयूं दवाऊं कपड़ो ऐं इंजीनियरिंग गुड्स स्विट्जरलैंड ॾांहुं रवानगी करे सघबियूं श्री मोदी चयो त साॻिए वक़्तु भारत स्विट्जरलैंड जी सीड़प खे घणनि खेत्रनि में पाण कशिश कराईंदो जहिड़ो कि बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस बैंकिंग वीमो खाधे खे सुधरण ऐं सस्टेनेबिलिटी प्रधानमंत्री चयो त इन्हनि कारोबारनि ज़रिए ॿई मुल्क गॾिजी करे कमु कंदा त जीअं भरोसेमंद सप्लाई चेन्स खे बरपा कया वञे इन खां अलावा पूरे आलम खे भरोसेमंद सोल्यूशन्स हल मैसर कराया वञनि हुन चयो त ॿई मुल्क अॼु सहकार जे घणनि इम्काननि खे ॻोल्हियो ख़ासि करे फ़ौजी मट सटा ऐं बचाव पैदावार में श्री मोदी चयो त हुननि पाण में क़बूलियो आहे त न्यूक्लियर एनर्जी में सहकार खे अञा वधीक उनो बणायो वेंदो प्रधानमंत्री चयो त भारत ऐं स्विट्जरलैंड मंझि दोस्ती सदियूं पुराणी आहे हुन चयो त 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद स्विस एल्प्स में हिमालय जी उमिरि जी किरण ॾिठी महात्मा गांधी पिण पंहिंजो स्विट्जरलैंड में घणो ई टाइम बितायो आहे ऐं हुतां जे माण्हुनि सां लाचार पिण कई आहे श्री मोदी चयो त इन्हनि इतिहासिक यात्राउनि जी यादगिरियूं अॼु ताईं असांजे दोस्ती में पराडो करे रहियूं आहिनि तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: अगस्त करें राम पंजवाणी जी आवास में झूलेलाल।

कोरस गीत फिल्म शलदेर न मज्जा मन मा बुधिरा रचोता पेशा की संत कवराम जो

आकाशवाणी की सिंधी सर से ही पेश है खास खास खबरों। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का अवल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जीएसएम बोर्ड से मुलाकात कई, समय के शुमार के अंदर बरकरार अंदर तरक्की लाया टेक्नोलॉजी जो सदनों। मौजूदा माली साल दौरान आलमी बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक भारत जे जीडीपी वाद जी अगकथी बुरी ढाई पंज सैकड़ो वधाए करे सत ढाई एक सैकड़ो कई आहे। बचाव वजरात भारतीय नेवी बेड़न जे लाए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम ए लॉन्चर्स के खरीद करण जे लाए 660 करोड़ रुपए जी कॉन्ट्रैक्ट से सही कई आहे। अमरीकी कानून शासन बितरफी पार्टी जो रेजोल्यूशन आंदो है तह में भारतीय पायलट जी इज्जत कई वेंदी जै फ्लाई दुबई दहशत अंगेज हमले के रोके वरतो। बेल्जियम में जन्म वरतल साइंटिस्ट फ्रैंकस हेलेन 2026 जो नोबेल प्राइज नोबेल इनाम फिजिक्स में खटो है। हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स एस्ट्रोफिजिक्स ओरिजिन में गोले लदी है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन

0: और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के कार्य शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे पामला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में टीईपीए की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। दोनों देश दक्षिण दक्षिण सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुडजेटो अगाक्वा के साथ समझौतों का आदान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कालाकोट और राजौरी सेक्टरों का दौरा कर परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सेना ने बताया कि सैनिकों ने उन्हें नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनाई गई सतर्कता, प्रशिक्षण, तालमेल और नवीन प्रथाओं सहित प्रमुख परिचालन तैयारियों की जानकारी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as the Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने संजुक्ता मुखर्जी के गाए भजन सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। इस कार्यक्रम को पेश करने के लिए हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी साथ अल्पना। जी हाँ, इंतजार का वक्त खत्म हुआ और आपका सुबह का फेवरेट और बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

जी हाँ साथियों, सुबह सुबह मौसम का जादुई कमाल होता है और उस पर अगर आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हो तो क्या कहने। जी हाँ, अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है तो आप दूसरों की जिंदगी भी खुशनुमा बना सकते हैं। तो बस प्यारी सी मुस्कान रखिए अपने चेहरे पर और अपने दिन का सफर शुरू करिए और उम्मीद करते हैं कि आपका सफर और भी खूबसूरत होगा और साथ ही हमारे गीत उसको और भी उम्दा बना देंगे। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

तो साथियों, चाय की चुस्कियों के साथ आप भी तैयार हो रहे होंगे, कोई ऑफिस के लिए, बच्चे स्कूल के लिए, और गृहणियां अपना काम भी कर रही होंगी। लेकिन लेकिन लेकिन खूबसूरती तो इसमें है कि आप ये सब खुशी के साथ करें। जी हाँ, खुशी के साथ करिए और अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्तता समझते हैं ना, व्यस्तता इस जीवन में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप व्यस्त हैं तो आप वैसे भी खुश रहेंगे और आपका हर पल खुशनुमा बीतेगा, क्योंकि आपके पास नकारात्मक चीजों को या नेगेटिव चीजों को सोचने का वक्त ही नहीं होगा। तो चलिए, हर पल को खूबसूरत बनाइए इस और प्यारे से गीत के साथ।

बहुत खूबसूरत पल कटेगा क्योंकि हम है ना आपके साथ प्यारे प्यारे गीतों के साथ, और पल तब भी बहुत खूबसूरत कटता है जब आपके साथ कोई अपना हो और आप उससे अपनी बातें साझा कर सके। और हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, विश्वास कर पाए आप और ऐसे पे साझा करें जिस पे आपको पूरी तरह विश्वास हो। तो भरोसेमंद इंसान से अपने मन की बातें कहिए तो आपका हर पल और भी खूबसूरत कट सकता है। और चलिए अगला गीत सुनते हैं, एक और प्यारा सा गीत है फिल्म कोई मिल गया सी।

जी हाँ साथियों, पक्षी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। वो यहाँ तक कि बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं, और यही नहीं सपनों की उड़ान भरने की कला भी हम पक्षियों से सीख सकते हैं, और साथ ही वर्तमान में जीने की कला। जी हाँ, अगर वर्तमान में आप खुशी से अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो जिंदगी में सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। बहुत सारी शिक्षा हमें मिलती है प्रकृति से और साथ में वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं से भी। तो जिंदगी में सारी चीजों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो अगला गीत सुनते हैं, आवाज है शान की।

जी हाँ साथियों, इसी तरह मुस्कुराते रहना चाहिए जिंदगी में और आगे सफलता आपके कदम चूमेगी ही। तो छोड़े जा रही इसी प्यारे गीत के साथ आपको, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा आगे और आपका साथ देने का, क्योंकि आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो, आप जो चाहते हैं आपकी जिंदगी में मिले। तो अल्पना को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतो भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 8 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जय राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक

0: प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिक्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड। ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑल्सो कम अप विद वाटर मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर करीब 841 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की दो अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
5: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के

0: पूर्ण सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोर्वोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि मार्च से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
2: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य

0: निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक है प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिन्दुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रूपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर सीबीआई के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्ता में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
0: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विवार्षिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat Ji Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn

0: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
1: गोवा ऐसा शहर है जो न सिर्फ घना कदर बहरी विरसे बल्कि वसी आबी गुजरगाहों का हामिल है। पणजी से महेश चौपाड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ तूफान और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। भारत ने कल लखनऊ में खेले गए पहले टी20 बैन अलावामी मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम 19 ओवर्स और एक गेंद में 171 रन ही बना सकी। अब सीरीज का दूसरा मैच रांची में जुमे को खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्लाह।
3: शुक्रिया गौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाइव होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मरकजी काबीना में 10,000 करोड़ रूपये के एमएसएमई फंड मंजूर किए जाने की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि इससे छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों को तवील मुद्दती तरक्याती सरमाया फराहम किया जाएगा और एमएसएमई शोबे को फरोग हासिल होगा। चार रियासतों में हुए जिमनी चुनाव के लिए वोटिंग पुरअमन रही, 9 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, कबायली उमूर के मरकजी वजीर जुआल ओरम ने कबायली बिरादरियों से मुतालिक आईनी हकूक और कानूनी दफात पर मबनी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया।
2: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हुकूमत के एक सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी काबीना ने इस अहम कामयाबी को यादगार बनाने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। हुकूमत ने विकसित भारत जीराम जी स्कीम के तहत काबिल इजाजत 375 कामों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले के 266 कामों में 41% तौसी की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोबाइल मुवासलात एसोसिएशन के आलमी निजाम के बोर्ड अरकान के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत वाली और लगातार तरक्की का आले कार होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी दोमाही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले टी20 बैन अलावामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे राग नट भैरव में गायन, कलाकार है अनीशा राय।
5: नमस्कार, मेरा नाम अनीशा रे, मैं राग नट भैरव से शुरू कर रही हूँ। धन्यवाद।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा के अंतर्गत अभी आपने सुना राग नट भैरव में गायन, कलाकार थी अनीशा रे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

से एक तकरीर सुन सकेंगे। 1 बजे आलमी खबरें नश्र होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। बेशर प्रोग्राम सुबगाही आज सुनिए शब्द।

0: सुबगाही प्रोग्राम के तहत अभी आपने शब्द सुना। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है आज सवेरे।
1: और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। 1913 में हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए लगातार चलने वाली असेंबली लाइन का संचालन शुरू हुआ, जिसने विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला दिया। और 1942 में अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की। 7 अक्टूबर 1944 को अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधियों ने डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन के दौरान भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा और प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया था, जिसकी घोषणा 9 अक्टूबर 1944 को जारी की गई थी। और 11 सितंबर को 2001 में आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने तालिबान और अलकायदा के ठिकानों के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। और इतिहास में दर्ज इन घटनाओं के बाद अब स्मरण उन महान विभूतियों का जिनका आज जन्मदिन है, जयंती या पुण्यतिथि है और जिनके कार्यों और विचारों ने समाज को प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया। कल्पना कीजिए उस दौर की श्रोताओं, जब देश में अंग्रेजी शासन भारत की धरती पर भारत के लोगों को ही स्वतंत्रता से जीने के अधिकारों से वंचित करती थी। ऐसे में विद्रोह करने वालों को अदम्य साहस का पर्याय माना जाता था। वीर ही नहीं, वीरांगनाएं भी साहस के साथ क्रांति का बिगुल फूंक रही थी। ऐसी ही एक वीरांगना थी दुर्गावती देवी। 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में जन्मी दुर्गावती देवी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी और स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय योद्धा थी। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह को अंग्रेजी पुलिस की नजर से बचाकर निकालने में दुर्गा भाभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने छोटे बेटे के साथ भगत सिंह के साथ वेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा पर निकली। यह साहस और सूझबूझ की अद्भुत मिसाल थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 1927 में लाहौर में बुलाई गई क्रांतिकारियों की बैठक की अध्यक्षता भी दुर्गा देवी ने की। तत्कालीन बंबई के गवर्नर हेली को निशाना बनाने की योजना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और इस दौरान टेलर नामक एक अंग्रेज अधिकारी घायल हुआ। 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका साहस, उनका त्याग और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण आज भी हमें प्रेरणा देता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वो वीरांगना जिनका नाम इतिहास हमेशा

क्रांतिकारी केदारेश्वर सेन गुप्ता का वंदन। विद्यार्थी जीवन में ही केदारेश्वर का संपर्क अनुशीलन समिति के नेता पुलिन बिहारी दास से हुआ और वे शीघ्र ही क्रांतिकारी दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगे। उस समय उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व सचिंद्र सान्याल कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी और रास बिहारी बोस के जापान चले जाने के बाद दल को संगठित करने का दायित्व केदारेश्वर को सौंपा गया। वे वाराणसी आए लेकिन पुलिस की निगरानी बढ़ते ही बंगाल लौट गए और भूमिगत रहकर क्रांतिकारी गतिविधियां की। 1917 में वे गिरफ्तार हुए और 1919 तक हजारीबाग जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद उन्होंने रूई का व्यापार शुरू किया लेकिन उससे होने वाली आय भी क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा दी। उनका जीवन और उनकी कमाई सब कुछ देश के नाम। व्यापार के सिलसिले में मुंबई गए, वहां भी गिरफ्तार हुए। बुरहानपुर जेल में अमानवीय व्यवहार के विरोध में उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और वे क्षय रोग की चपेट में आ गए। बाद में उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया गया लेकिन घर में नजरबंद कर दिया गया। 1941 से 1946 तक उन्होंने फिर से जेल यातना सही।

केरल की धरती ने देश को कई महान स्वतंत्रता सेनानी दिए, उनमें एक प्रमुख नाम है के केलप्पन का। 24 अगस्त 1889 को कालीकट केरल में जन्मे केलप्पन राष्ट्रवादी नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। केलप्पन ने अपनी कॉलेज पढ़ाई छोड़ देश की आजादी के संघर्ष में अपना जीवन लगा दिया, जो उनके लिए शिक्षा से बढ़कर उस समय देश की पुकार थी। 1930 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना और ये उनके साहस, निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का बड़ा सम्मान था। 7 अक्टूबर 1971 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका संघर्ष और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करता है।

0: दिनों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी है।
1: विजय देव नारायण शाही एक ऐसा नाम जिसने कवि और आलोचक के रूप में साहित्य को केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि अपने समय से संवाद का माध्यम बनाया। 7 अक्टूबर 1924 को वाराणसी में जन्मे शाही नई कविता आंदोलन की महत्वपूर्ण आवाज थी। उनकी कविताएं तीसरा सप्तक में प्रकाशित होकर चर्चा में आई। उनका प्रमुख काव्य संग्रह मछली घर है। बाद में उनकी कविताएं साखी, संवाद तुलसे और आवाज हमारी जाएगी जैसे संग्रहों में प्रकाशित हुई। लेकिन शाही की पहचान केवल कवि की नहीं थी, हिंदी आलोचना में उनकी पुस्तक जायसी का विशेष स्थान है। इसके अलावा साहित्य क्यों, छठवां दशक और वर्धमान और पतनशील जैसे उनकी आलोचनात्मक लेखन ने साहित्य को नए प्रश्नों और नए दृष्टिकोणों से देखने की राह दिखाई। शाही की खासियत थी कि वे स्थापित साहित्यिक धारणाओं से सवाल करते थे। लघु मानव की अवधारणा और नई कविता पर उनकी बहसों ने हिंदी साहित्य में नई वैचारिक ऊर्जा पैदा की। और श्रोताओं, भारतीय संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती है जो समय बीत जाने के बाद भी दिलों में गूंजती रहती है। ऐसी ही एक अमर आवाज थी बेगम अख्तर की। 7 अक्टूबर 1914 को अयोध्या में जन्मी बेगम अख्तर का मूल नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था। उन्होंने ठुमरी, दादरा और गजल गायन को अपनी विशिष्ट शैली से नई ऊंचाई दी। उनकी आवाज में दर्द, मिठास और भावनाओं की ऐसी गहराई थी।

0: संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1968 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1975 में ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया। 7 अक्टूबर 1974 को एक संगीत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अंतिम बार प्रस्तुति दी और 30 अक्टूबर को इस संसार से विदा हुई। बेगम अख्तर की आवाज आज भी हमें यही एहसास कराती है कि कुछ सुर खामोश हो जाते हैं लेकिन उनकी गूंज कभी खत्म नहीं होती।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हुकूमत के एक सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी काबीना ने इस अहम कामयाबी को यादगार बनाने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। हुकूमत ने विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत काबिले इजाजत 375 कामों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले के 266 कामों में 41% तौसी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोबाइल मुआसलात एसोसिएशन के आलमी निजाम के बोर्ड अरकान के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत वाली और लगातार तरक्की का आलेकार होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी दोमाही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैन अक्वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सरबराही हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दते कार दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन 2001 में जनाब मोदी ने पहली मरतबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आजम बने थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज से अपने अवामी जिंदगी के सफर का आगाज किया था और इस साल वो अवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर नितिन नवीन आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करेंगे। इनके अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से इस प्रोग्राम में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि एक प्रधान सेवक के तौर पर जनाब मोदी के सफर से सबकी शमूलियत वाली तरक्की का विजन एक मुल्क गिर मिशन में तब्दील हो गया है।

जिसे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास से रहनुमाई हासिल हुई है। नायब सदर ने कहा कि जनाब मोदी की दूरअंदेश क्यादत की एक बड़ी कामयाबी यह है कि इसके तहत 25 करोड़ आवाम को इंतहाई गुर्बत से निजात हासिल हुई है। हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी वीबीजी रामजी कानून 2025 के तहत काबिले इजाजत कानून की फहरिस्त जारी की है। इसमें देही कामों के नए फ्रेमवर्क के तहत 375 काबिले इजाजत काम बयान किए गए हैं। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि नई फहरिस्त में पिछले फ्रेमवर्क के 266 कामों में 41% कामों की तौसी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर जोर देकर कहा है कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत और लगातार तरक्की का एक आलेकार होना चाहिए। जनाब मोदी ने कल सेवा तीरथ में मोबाइल मुआसलात की एसोसिएशन के आलमी निजाम जीएसएमए के बोर्ड अरकान से बातचीत की। ये बातचीत इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले की गई है जो नई दिल्ली में आज से इस महीने की 10 तारीख तक मुनाकिद की जाएगी। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि सभी टेक्नोलॉजी की फराहमी लाजमी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि समाज का कोई भी तबका पीछे नहीं रह गया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजिटल खिदमात को खास तौर पर आलमी जुनूब के लिए मुनासिब खर्च और काबिले रिसाई बनाने की जरूरत पर जोर दिया। 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज नई दिल्ली में यशोभूमि में शुरू होगी। इसका मौजू है हुदूद के बगैर पैमाइश, जिसमें शराकत दारी के एक आलमी प्लेटफार्म सरमायाकारी और एक दूसरे को मालूमात बहम पहुंचाने का एक आलमी प्लेटफार्म फराहम करते हुए टेली मुआसला डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तिरा के शोबों में भारत की काबिले तहसीन तरक्की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा शुरका, 500 से ज्यादा नुमाइशकार, 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 900 से ज्यादा मुफक्किरीन शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमलिन आज भारत मंडपम में दूसरी इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ईएफटीए प्रोस्पेरिटी समिट 2026 में शिरकत करेंगे। ये समिट भारत ईएफटीए तिजारती व इक्तसादी साझेदारी से मुतालिक मुआहिदे की सालगिरह के तौर पर मुनाकिद की जा रही है जो गुज़श्ता बरस यकुम अक्टूबर को नाफिज किया गया था। इस समिट में सरकार के आला अफसरान, सनती रहनुमा और भारत और 4 ईएफटीए ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शराकतदार शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशरी की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। कल बिलासपुर पहुंचकर उन्होंने एम्स बिलासपुर के पहले जलसे तकसीम असनाद में शिरकत की और तलबा को मेडिसिन और डिग्रियां अता की। अपने दौरे के दूसरे दिन आज सदर जमहूरिया अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा जिसके बारे में बहुत से माहिरीन को उम्मीद है कि तकरीबन 3.5 साल के बाद इस शरह में कोई इजाफा किया जाएगा क्योंकि मगरबी एशिया तनाजे के सबब अफराते जर में इजाफा हो रहा है। पिछली बार रेपो शरह में फरवरी 2023 में इजाफा किया गया था। आरबीआई ने उस वक्त इस शरह में 0.25% का इजाफा करके इसे 6.5% किया था। इसके बाद आरबीआई ने 2023-24 में पूरे साल कोई इजाफा नहीं किया और 2025 में उसने रेपो शरह में कटौती करनी शुरू कर दी थी। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के मदरसा तालीमी निजाम में एक बड़ी तब्दीली करते हुए रियासत के मदरसा एजुकेशन कमीशन को मंसूख कर दिया है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल ये ऐलान किया कि इस कमीशन को स्कूल सर्विस कमीशन के साथ जम कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सताइश की है। उन्होंने उनकी बहुत सी बुनियादी खसूसियात का जिक्र किया है जिसके बारे में उनका ख्याल है कि इन खसूसियात से वजीर आजम का सफर गैर मामूली नौईयत इख्तियार कर गया है। रूस ने लिथुआनिया को उसके इलाके में नेटो के फौजी अड्डे और न्यूक्लियाई हथियारों के मुमकिन तैनाती के सिलसिले में मुतनब्बे करते हुए कहा है कि इस तरह के इकदाम से यूरोप में कशीदगी मजीद बढ़ जाएगी। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्केव ने कहा है कि इस तरह की तैनाती की सूरत में रूस को अपनी कौमी सलामती की हिफाजत की खातिर जवाबी

0: दरपेशी नहीं होगा। होना ये चाहिए कि जो काम हमारे कल के लाइयाहे अमल में है उन्हें आज ही कर डालना चाहिए, कल का किसको पता। अमल से जी चुराने वालों के लिए कबीर दास वास करना चाहते हैं कि जिंदगी में एक नज्म जब्त होना चाहिए, हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर हो, काम वक्त पर न हो तो उसमें लज्जत नहीं रह जाती। बेदिली से किया गया काम दिमागी थकान पैदा करता है। काम से लगाव होना पहली शर्त है। अगर ये लगाव होगा तो हम उसे कल पर हरगिज नहीं छोड़ेंगे। इस सिलसिले में एक दिलचस्प हिकायत मुलाहिजा कीजिए। एक दौलतमंद शख्स के पास एक पहुंचा हुआ फकीर कुछ ख्वाहिश लेकर गया। उस शख्स ने कहा कि आज नहीं कल आना, जो चाहोगे मिलेगा। फकीर ने बड़ी हैरत के साथ कहा, अच्छा आपको यह भी मालूम है कि कल आप रहेंगे। फकीर के इस कौल से उस शख्स की आंखें खुल गईं। जिंदगी का फलसफा समझाने के लिए सूफी और संत ये तरीका अख्तियार करते थे। कल की उम्मीद करना अच्छी बात है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन ये उम्मीद आज के काम को कल पर टालने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि वो इस काम को कल और बेहतर ढंग से कर सकता है तो ये उम्मीद नहीं काहली है। कल और आज को लेकर हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हजरत शेख सादी ने गुलिस्तान में फरमाया है कि गम फरदा में शायद खुर्दा निमरोज, यानी कल का गम आज नहीं खाना चाहिए। मुराद ये है कि आज का काम अभी करो, कल का गम क्यों पालते हो। इसी तरह संस्कृत की एक मशहूर कहावत है, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम, यानी जो नेक काम है उसे आज और अभी करो, क्या पता जिंदगी फिर ये मौका दे या न दे। और जो काम नेक नहीं है उसे न आज करो न कल और न आइंदा कभी।
1: आप सुन रहे थे अकवाल जरी का प्रोग्राम शमे फरोजा। आज का मौजू था कल करे सो आज कर। प्रोग्राम पेश किया डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा ने। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। आज की पेशकश में आप सुनेंगे राजेंद्र कुमार कचरू की आवाज में अख्तर शिरानी और हसरत मोहानी का कलाम, और पुष्पा रानी से फानी बदायूनी और हसरत मोहानी का कलाम।

गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए जनाब अनिल थापड़ की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी सपने बहारों के।

आज सुबह से ही घर में चहल पहल थी। वैसे भी इतवार था, सब लोग घर पर ही थे। अस्मा काफी दिनों से बीमार थी, आज ही मध्यम लौ की तरह चेहरे पर थोड़ी रौनक नजर आई, तो अम्मी ने नहाने के लिए कह दिया। बहुत दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे तंग आ चुकी अस्मा सुबह ही नहाने को तैयार हो गई। नहाकर बाहर निकली तो उसकी खूबसूरत लटों का पानी उसके चेहरे से शबनम की तरह लिपट रहा था। सीधे साधे नए नक्श वाली और घने लंबे बालों वाली लड़की अस्मा सभी को अच्छी लगती थी। गौर तो उसे छू नहीं गया था, हमेशा हंसते रहना। अस्मा अब ब्याहने लायक हो गई थी। जब भी अम्मी अब्बा उसके रिश्ते की बात करते, वही सारी बातें नौकरी पर आकर खत्म हो जाती। खैर, अस्मा की किस्मत अच्छी थी, उसे जल्द ही सरकारी नौकरी मिल गई और तब से अम्मी अब्बा कितने ही रिश्ते देख चुके पर उन्हें कोई जचा ही नहीं। इधर अस्मा अपनी नौकरी में मसरूफ हो गई। इन्हीं दिनों एक लड़का उसकी जिंदगी में आया जिसने उसकी जैसे दुनिया ही बदल डाली। दरअसल वो लड़का और अस्मा एक ही स्टैंड से बस में सवार होते थे। रफ्ता रफ्ता ये पहचान दोस्ती में बदल गई और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दरअसल वो लड़का जैसे उसने अस्मा को बताया कि उसका नाम अरमान है, वो किसी सरकारी होटल में मैनेजर की हैसियत से काम करता है। अब्बा का इंतकाल हो चुका है और अम्मी सौतेली है। बचपन बहुत ही मुश्किलों में गुजरा है। अस्मा को अरमान की दास्तां सुनकर उससे और भी हमदर्दी।

उसके ख्वाबों में तसव्वुर में अरमान छा चुका था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अस्मा के अरमान और ख्वाब चूर चूर हो गए जब उसकी भाभी और भाईजान ने उसका पता ठिकाना तलाश कर अस्मा को बताया कि वो एक आवारा और धोखेबाज किस्म का लड़का है। ना ही वो किसी सरकारी होटल में मैनेजर है और ना ही उसका कोई घर बार है। अस्मा पर तो जैसे आसमान ही गिर गया। वो जहनी तौर पर बीमार हो गई। उसके जहन में माजी के लम्हों की कहानी गूंज रही थी जिसे वो भुला नहीं पा रही थी।

असमा पहले की तरह चहकती नहीं थी, उसके लबों से हंसी गायब हो चुकी थी। जहां उसकी आंखों में शोखियां थी वहां अब दर्द झलकता था। उसकी कशिश भरी आवाज में एक टीस रह गई थी, जैसे जिंदगी अब उसके लिए बोझ बनकर रह गई हो। जब भी अम्मी अब्बा उसकी शादी ब्याह की बात करते तो असमा ना कर देती। शादी ब्याह में अब उसे कोई रंग नजर नहीं आता था और वो ये सोचकर और भी खौफ ज्यादा हो जाती कि कहीं शादी के बाद उसके ससुराल वालों को उसकी बीती जिंदगी के बारे मालूम हो गया तो क्या होगा। भाईजान, भाभी और अम्मी ने बहुत समझाया और कहा, तुझे क्या जरूरत है कुछ भी कहने की, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है।

आपने कौन सा तुमने गलत काम कर लिया जिसके लिए हमें उम्र भर शर्म से झुकना पड़ जाए। लेकिन अस्मा तो जैसे पत्थर की बन गई थी, अब वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऑफिस के काम में मसरूफ रहना चाहती थी। वक्त ने थोड़ी करवट ली, अब अस्मा सोचने और अपने दिल को समझाने लगी कि कब तक वो अपने माजी के लम्हों के बोझ को ढोती रहेगी। वो एक ख्वाब ही तो था जिसका दिन की रोशनी से वास्ता न था।

और असमा की बीती हुई जिंदगी के जख्म बढ़ने लगे थे। एक दिन उसके ऑफिस के फोन पर घंटी बजी। असमा ने रिसीवर उठाया, उधर से किसी लड़की की आवाज थी जिसने अपना नंबर डायल किया था लेकिन असमा के फोन से मिल गया। असमा ने रॉन्ग नंबर कहकर रख दिया। जब कई बार ऐसा हुआ तो असमा को ऐसा लगा कि कोई जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। असमा ने गुस्से में कहा, आप क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं? उस लड़के ने माफी मांगने के लहजे में कहा, आप बुरा मत मानिए मोहतरमा, यह तो महज एक इत्तेफाक है जो नंबर बार बार आपके फोन से मिल जाता है। और फिर उसने शोखी भरे अंदाज में कहा, न जाने क्यों आज बार बार आपकी आवाज सुनने को मिल रही है। अब असमा को भी ना जाने कि उसकी बातें करने का तरीका अच्छा लग रहा था। अभी कुछ कहना ही चाह रही थी कि उस लड़के ने इजाजत मांगते हुए कहा, आपकी आवाज में कशिश है। अपना फोन नंबर देते हुए कहा, मेरा नाम जावेद है, कभी फुर्सत मिले तो मुझे जरूर फोन करना, मैं इंतजार करूंगा।

अजमा को ऐसा लगा जैसे बिजली के नंगे तारों को छू लिया हो। कुछ ऐसे ही पशुपेश में दिन गुजरते रहे। एक दिन अजमा ने अचानक ही अपनी डायरी खोली तो जावेद का फोन नंबर और नाम पढ़कर उसका सारा बदन कांप उठा। न जाने क्यों एक अनदेखी ताकत जो बिला वजह उसे जावेद की तरफ खींचती जा रही थी। उसने कांपते हाथों से जावेद को टेलीफोन किया। फोन मिलाते ही घंटी बजी। उधर से जावेद स्पीकिंग की आवाज हवा में लहराती हुई उसके कानों में घुल गई। तब अस्मा ने पहले फोन का हवाला देते हुए कहा, मैं अस्मा बोल रही हूं जावेद साहब। फिर जावेद को सारा किस्सा याद आ गया और उसने बड़ी जिंदा दिली से उसका हाल पूछा। अस्मा को उसकी बातें और अंदाजे बयां दोनों ही दिलकश लगे। तब जावेद ने शरारत भरे लहजे में कहा, मोहतरमा आपने अपना नाम तो बड़ी जल्दी बता दिया, अब लगे हाथ अपना ठिकाना भी बता दीजिए। शायद ये बंदा अपना दिल तलाशते हुए आपके दर तक आ जाए। अस्मा को उसकी बातों पर हंसी आ गई और हंसते हंसते बोली, आप आदमी दिलचस्प हैं, बातें बड़ी जल्दी बना लेते हैं। उधर से आवाज आई, अस्मा जब पहली बार मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तभी कहा था तुम्हारी आवाज में कशिश है, और अब हंसी सुनी तो लगा उसमें झनकार है। तुम्हारी हंसी बिल्कुल नई नवेली खिलती हुई कली की तरह है जिसमें अब तक बचपन की झलक शामिल है। अस्मा तुम्हारी आवाज तुम्हारी हंसी इतनी दिलकश है और हसीन है तो तुम्हारा दिल और तुम कितनी हसीन होगी, मैं यह तसव्वुर कर रहा हूं। और इसी तरह रोज फोन पर बातों का सिलसिला जारी रहा। अस्मा ने कई बार चाहा कि जावेद को अपनी बीती हुई जिंदगी से वाकिफ करवा दे। उसे खौफ था कि उसका अफसाना ना बन जाए। और एक दिन जावेद की गैर हाजिरी में उसके ऑफिस के दोस्तों से अपने माजी की दास्तान बता दी। दूसरे दिन जब अस्मा की जावेद से फोन पर बात हुई तो जावेद ने अस्मा की ही जुबानी उसकी दास्तान सुनी। अस्मा को घर आकर भी जावेद की बातें याद आ रही थी। वो मायूस हो गई। उसे यकीन हो गया था कि अब जावेद का कभी फोन नहीं आएगा और ना ही उसे मुझसे मिलने की चाह रहेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जावेद का अचानक फोन आने पर अस्मा हैरान भी थी और खुश भी। जावेद ने उसे अपने शहर से बाहर होने की बात कही और साथ ही कही तसव्वुर में मिलने की बातें। उसने अपनी एहसासे जुदाई अस्मा को बयान कर दी और कहा, अस्मा मैं तुमसे बिना मिले ही हर लम्हा तुम्हें अपने साथ महसूस करता रहा। अगर हमेशा के लिए ये साथ हो जाए तो कैसा रहे। अस्मा को तो जैसे बिना कहे सब कुछ मिल गया था क्योंकि वो भी जावेद की जुदाई महसूस कर रही थी।

अभी आप सुन रहे थे जनाब अनिल थापर की लिखी हुई ये गीतों भरी कहानी सपने बहारों के। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात आप सबके लिए दस्तियाब हैं। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये नगमा आपने मेरे महबूब फिल्म से सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में हंसते जख्म फिल्म से।

आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये नगमा हमने आपको सुनवाया दिल ही तो है फिल्म से। अब सुनिए किशोर कुमार को, फिल्म है दुश्मन।

मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में अमृत फिल्म से ये ट्रैक अभी आपने सुना। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं जनाब हरे कृष्ण कौल का तहरीर करदा ड्रामा, जिसका उन्वान है नकारा। पेशकश प्रेम वोहरा की है।

0: कॉरिडोर की तरफ।
1: जब से आर्किटेक्ट से ये नक्शा ले आए हो ना, तब से सारा कामकाज भूल गए हो।
0: ओहो नजमा, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं। घर, अपना एक छोटा सा घर, एक तखलीक, गजल के शेर की तरह मुख्तसर होने के बावजूद अपने में मुकम्मल, एक ख्वाब या फिर ख्वाब की ताबीर।
1: हजरत, अभी तो ये कागज पर खींची चंद लकीरें हैं। इन कागजी लकीरों को ठोस शक्ल देने के लिए शायरी की नहीं बल्कि ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट जैसी गैर शायराना चीजों की जरूरत है।
0: बस यही तो यूसुफ मियां मात खा गए। तुम्हारे अब्बा ने हम पर एहसान तो किया ही था।
2: अरे एक आध किलो एहसान अगर और कर देते तो क्या कोई फर्क पड़ जाता?
1: क्या मतलब, मैं समझी नहीं।
0: भाई देखो, एक प्लॉट की जगह अगर उन्होंने हमें दो प्लॉट दिए होते तो हमारा तो मसला ही हल हो जाता। हम दूसरा प्लॉट बेच देते और उसी रकम से पहले वाले प्लॉट पर मकान खड़ा करते।
1: वाह वाह वाह, क्या बात कही है। तुम्हारी अपनी जायदाद तुम्हारे भाइयों ने धोखे में तुमसे छीन ली और खुद तुमने जिंदगी में कलम घसीटने के सिवा कुछ नहीं किया।
0: नजमा,
1: अब्बू ने मेरा हक समझने से ज्यादा मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे 200 गज का प्लॉट दे दिया और तुम चाहते हो कि वही तुम्हें मकान भी बनवा कर दे दे।
0: खैर कोई बात नहीं, आजकल बहुत से सरकारी और गैर सरकारी इदारे मकान बनाने के लिए आसान शर्तों पर कर्जे देते हैं।
1: हाँ, हमारे स्कूल की एक टीचर भी यही कह रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि कर्ज लेकर मकान बनाना अच्छी बात है या बुरी?
0: इसमें बुरा क्या है? कर्जा चुकाने के लिए हमें हर महीने बस 2-2 हजार रुपए की किस्तें अदा करनी होंगी।
1: हर महीने 2-2 हजार?
0: अरे सुनती जाओ, ये किस्तें हमें सिर्फ 20 साल तक अदा करनी होंगी।
1: 20 साल? कर्ज कितना मिलेगा?
0: यही कोई 1-1.5 लाख और कितना?
1: 1-1.5 लाख 2 हजार रुपए, यानी 1-1.5 लाख के बदले हमें 4-5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। जनाब यूसुफ साहब, ये सौदा मुझसे नहीं होगा। 8 बज गए, मुझे तो स्कूल जाने में देर हो गई।
0: अरे सुनो तो सही। चली गई, बेचारी को कर्जा लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, मगर एक दिन हिम्मत हो ही जाएगी। ये तो प्रिंस की मेहरबानी है कि हमें यह कोठी मुफ्त में रहने को दे रखी है, मगर यह मेहरबानी हमेशा तो नहीं रहेगी। अगर उसने खुद इसी शहर में मुस्तकिल तौर पर रहने का फैसला कर लिया तो हमें तो ये मकान खाली करना ही पड़ेगा। और जब महीने का 1-1.5 हजार रुपए मकान का किराया देना पड़ेगा तो नजमा साहिबा खुद ब खुद समझ जाएंगी कि कर्जा लेकर अपना मकान बनाना और हर महीने 2-2 हजार की किस्त अदा करना कहीं बेहतर है।
3: आदाब हजरत यूसुफ साहब, आदाब हजरत।
0: अरे मनोहर साहब, आदाब आदाब। तशरीफ रखिए ना।
3: अरे क्यों नहीं भाई।
0: कहिए, आज कोई नई खबर है, कोई नया स्कैंडल?
3: भाई पहले ये बताइए, आप पुराने स्कैंडल के बारे में रिपोर्ट कब छाप रहे हैं?
0: छापेंगे, कभी कभी ना चाहते हुए भी ताखीर हो ही जाती है। खैर ये बताएं, आपको पूरा यकीन है कि 100 के बदले सिर्फ 60 क्विंटल ही तोले गए?
3: भाई मुझसे खुद ठेकेदार ने कहा।
0: ओ, आप उसे जानते हैं?
3: अरे साहब, इस साल पहली बार हमारा साहब खुद माल तुलवाने गया, नहीं तो ये काम बंदा ही करता था।
0: आप

0: इतनी चाल चलकर अपने को पिटवाना है क्या?
1: ठीक है मगर ये बताइए कि आपके नए साहब ने आपसे ये चार्ज छीन क्यों लिया?
0: भाई इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, लेकिन लगता है आप जल्दी में हैं।
1: हाँ दिलगीर साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
0: भाई माफ कीजिएगा, ये दिलगीर साहब कौन है?
1: अरे भूल गए, जिस अखबार में मैं काम करता हूँ उसके एडिटर और मालिक।
0: याद आया चलिए मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ।
1: तो फिर चलिए।
0: हाँ भाई वो देखे नए अफसर ने मुझसे स्टोर का चार्ज क्यों छीन लिया, अगर सुनेंगे तो शायद यकीन नहीं करेंगे। कभी कभी मन करता है कि नए अफसर की नई चाल के बारे में इश्तहार छपवा कर हर एक दीवार और हर एक खंबे पर चिपका दूं, मगर क्या करूं, मुझे उर्दू लिखनी ही नहीं आती है।

0: सात बज गए, आज मुझे इतनी देर हो गई।
1: हाँ नजबा, सुबह 8 बजे घर से चली थी और शाम के 7 बजे लौटी हो। मैं कहता हूँ छोड़ दो ये एग्जामिनेशन ड्यूटी।
0: कैसे छोड़ दो, तुम्हारे 2000 और मेरे 2500 से घर कैसे चलेगा? और नया घर बनाने के लिए बचत कहाँ से होगी? अरे सिर बहुत दुख रहा है आज, देखना शायद बुखार भी है।
1: तो पहले डॉक्टर के पास चलो।
0: नहीं, मैंने एक टेबलेट खा लिया है, दूसरा सोने से पहले ले लूंगी, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी।
1: ठीक है, तुम जाकर आराम करो।
0: सुनो, तुम कुछ देर के लिए कागज स्याह करना छोड़ दो, एक जरूरी बात करनी है।
1: कहो ना।
0: वो ऐसा है कि एग्जामिनेशन सेंटर में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने मुझसे कहा कि अगर सोसाइटी अच्छी और भरोसे वाली हो तो लोन लेने में कोई हर्ज नहीं है।
1: मैं भी तो यही कहता हूँ।
0: तो फिर ठीक है ना, फिर कर लो कहीं से लोन का इंतजाम।
1: देखो, जमीन तुम्हारे नाम है, इसलिए लोन तुम्हें ही मिल सकता है, मुझे नहीं।
0: ठीक है, तुम कागजात तैयार कर लो, मैं दस्तखत कर दूंगी। उफ़ो, फिर लगे कलम घसीटने, ये कलम कलम न हुई मेरी सौतन हो गई।
1: तुम्हारी सौतन है या नहीं, मगर मेरी रोटी यही है।
0: रोटी? आजकल 2000 में 30 दिन के लिए सूखी रोटियां भी नहीं आ सकती।
1: नजमा,
0: चिल्लाओ मत, तुम मेरा सर फटा जा रहा है, मैं अंदर जाकर लेटती हूँ, तुम कलम के बेलन से कागज के चकले पर रोटियां बेलते जाओ।
2: सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, क्या बात है और क्या बात से बात पैदा की है यूसुफ मियां।
1: शुक्रिया।
2: कोयले की दलाली किसने की, मुंह काला किसका हुआ, वाह वल्ला क्या बात है।
1: आखिर आप ही का शागिर्द हैं दिलगीर साहब।
2: मगर मुझे एक बात खटकती है, तुम कहते हो 40 क्विंटल कोयले का घपला हुआ है
1: जी।
2: अगर क्विंटल की कीमत 200-250 भी लगाएं, तब भी रकम कुल 8-10 हजार बनती है। अरे 8-10 हजार की चोरी भी कोई चोरी होती है? अमां आजकल तो लाखों करोड़ों रुपए पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं।
1: तो क्या मेरी ये रिपोर्ट छप नहीं सकती?
2: छपेगी, जरूर छपेगी। रकम मामूली जरूर है, मगर तुम्हारी कलम, मतलब कलम चलाने का अंदाज, मतलब अंदाज बयां गैर मामूली है। मालूम नहीं गालिब ने क्या सोचकर कहा था, भाई मैं तो यही कहूंगा, जिक्र उस या रुख का और फिर बयां तेरा। आसलमिया,
3: अभी हाजिर होता हूँ मालिक।
2: जिक्र उस या रुख का और फिर बयां तेरा, बन गया रकीब आखिर जो था शागिर्द मेरा। असलम मियां, देखो पहला सफा मुकम्मल होने पर दूसरे और तीसरे सफे पर यूसुफ साहब का ये मजमून लिखना, और अगर कुछ बातें बचे तो उसे सफा नंबर 7 पर ले जाना, समझ गए? और हाँ, नसीर अहमद से कहना कि 8वें सफे का इश्तहार लिखने के बाद 4थे और 5वें सफे पर इस डाइजेस्ट से ये मजमून नकल कर ले। अतालवी हसीना जो 35 साल की उम्र में ही 40 शोहर बदल चुकी थी।
1: है?
2: ये

0: ये क्या दिलगीर साहब?
1: अरे यूसुफ मियां, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है मेरे अजीज।
0: विटामिन बी कॉम्प्लेक्स?
1: हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारा मजमून एक जबरदस्त एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक ही हमारे समाज की क्रॉनिक बीमारी की दवा है। मगर दवा चूंकि तेज होने के सबब कुछ जरर भी पहुंचा सकती है, इसलिए इस जरर को कम करने के लिए 35 साल की उम्र में ही 40 शौहर बदलने वाली अतालवी हसीना जैसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली भी साथ रखनी पड़ती है।
0: दिलवीर साहब, आपके ख्याल में क्या हमारे समाज की क्रॉनिक बीमारी का इलाज हो सकता है?
1: हाँ, जरूर हो सकता है, मगर इसके लिए सब्र और एक लंबी जद्दोजहद की जरूरत है।
0: हम जद्दोजहद जारी रखेंगे, जो कहना होगा बगैर किसी खौफ या मसलहत के कहेंगे। मगर दिलगीर साहब, हमारी बात कोई सुनेगा भी कि नहीं?
1: तुम्हारा अंदेशा भी अपनी जगह दुरुस्त है। नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? मगर बरखुरदार, हमारा अखबार तूती की आवाज नहीं है, मैंने इसका नाम ही नकारा रखा है। खैर मजाक छोड़ो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस अखबार की खातिर कम कुर्बानियां नहीं दी हैं। मेरे दोनों भाई मुझसे कम तालीम याफ्ता हैं, मगर दोनों की माली हालत मुझसे कई गुना बेहतर है। मेरे बड़े भाई की जूतों की दुकान है, 100 रुपए के जूते पर 400 का ठप्पा लगाता है और 300 में बेचता है। ग्राहक समझता है कि उसने बाजी मार ली। छोटा भाई कंपाउंडर है, एक गांव में दवाइयों की दुकान चलाता है और आसपास के देहात में बगैर किसी ट्रेनिंग या लाइसेंस के डॉक्टरी प्रैक्टिस भी करता है। महीने में कम से कम 10,000 कमाता है।
0: अच्छा,
1: अब मुझे देखो, सारे खर्च काटकर बतौर नफा मेरे पास कितना बचता होगा? महीने में 3 या 3,500 बस। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारता। मुझे पूरा यकीन है कि लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तुम कहो, तुम्हारे भाई क्या काम करते हैं?
0: वो तिजारत करते हैं। मतलब जो कुछ भी करते हैं उसे तिजारत समझकर ही करते हैं। तीनों ने मेरे साथ धोखा किया और पुश्तैनी जायदाद का मेरा हिस्सा हड़प लिया।
1: यूसुफ नाम है ना, इसीलिए। तो भी शुक्र करो, तुम्हें किसी कुएं में नहीं धकेल दिया। अच्छा एक बात पूछूं?
0: जी
1: सच सच बताना, सुना है तुम्हें भी किसी जुलेखा ने खरीद लिया है?
0: जी मैं समझा नहीं।
1: अरे बुरा नहीं मानना, कहते हैं तुम्हें अपनी बेगम और उसके बाप से काफी दौलत, जमीन और जायदाद मिली है।
0: कहने वाले बकवास करते हैं। अलबत्ता मेरे ससुर के पास काफी जमीन थी, उन्होंने मुझे एक छोटा सा प्लॉट दिया। मुझे भी कहां दिया साहब, अपनी बेटी के नाम लिख दिया है।
1: भाई ये तो कुछ नहीं है, और मैं तो यही कहूंगा, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये, रज़ाकी नहीं है।

0: अरे क्या होगा मुझे?
1: इन्फेक्शन हो गया है और कुछ नहीं।
0: अरे 4 दिन हो गए दवाई खाते हुए मुझे, मगर बुखार तो अब भी है।
1: इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए अभी एक और हफ्ते तुम्हें ये दवाई जारी रखनी होगी।
0: हाँ, मगर डॉक्टर ने तो आज दवाई बदल दी है।
1: हाँ बदली, ये वही दवाई है। हाँ, नाम दूसरा है, कंपनी दूसरी है। बाकी डॉक्टर जाने के उसने एक कंपनी की दवा रद्द करके दूसरी कंपनी की दवा क्यों तजवीज की?
0: आए, आए, आए, मेरे तो गला सूख रहा है।
1: ये लो पानी पियो।
0: तुम्हें ऑफिस नहीं जाना आज?
1: नहीं, आज नकारे का नया शुमारा निकला होगा, अगले शुमारे के लिए परसों से काम शुरू होगा।
2: किसने की मुंह काला किसका हुआ? पढ़िए पढ़िए, हफ्ते बाद नकारे का नया शुमारा, पढ़िए पढ़िए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ लीजिए।

0: संत नहीं गए नरपुर न करेगा नया छुमारा 50 रुपए में।
1: असलम भाई गजब हो गया।
2: क्यों, क्या हुआ नसीर अहमद?
1: असलम भाई, मैं इस किताब से ये मजमून नकल कर रहा था, लेसर बीम्स यानी साइंस की दुनिया में इनकलाब, मगर बीच में 10-15-17 मुझसे छूट गई।
2: अरे 10-15-17 छूट गई तो कौन सी कयामत आ गई? 15-17 छूटने से जो जगह बचेगी वहां जली हरूफ में लिखो नकारा आपकी आवाज है और इसकी खरीदारी बढ़ाना आपका मुकद्दस फर्ज है।
3: भाई माफ कीजिएगा, ये एडिटर साहब कहाँ मिलेंगे?
2: प्रेस गए हैं, आप काम बताएं।
1: और नाम भी?
3: भाई मुझे तो मनोहर कहते हैं। ये बताइए, ये कोयलों की दलाली वाला आर्टिकल किसने लिखा है?
2: हमारे खुसूसी नामा निगार ने।
3: भाई मगर ये सारी बातें तो मैंने यूसुफ साहब को बताई थी, ये खुसूसी नामा निगार बीच में कहाँ से आ गया?
1: अरे भाई यूसुफ साहब ही तो खुसूसी नामा निगार हैं।
3: अच्छा, तो फिर ये यूसुफ साहब कहाँ मिल सकते हैं?
1: घर पर ही होंगे, उनकी बेगम की तबीयत कुछ ठीक नहीं।
3: भाई मैं उनकी हिम्मत पर उन्हें मरहबा कहना चाहता हूँ, उनके कलम को चूमना चाहता हूँ। वैसे ये सारी बातें मैंने ही उन्हें बताई हैं। मैंने और भी बहुत कुछ कहा था जो उन्होंने नहीं लिखा है। मैं खुद भी एक सनसनीखेज और वलवला अंगेज आर्टिकल लिख सकता था, मगर क्या करूँ, मुझे उर्दू लिखने नहीं आती है। अच्छा मैं चला।
2: उर्दू लिखनी नहीं आती है?
1: मेरे ख्याल में उसके नसीब अच्छे हैं असलम भाई, जो उसे उर्दू लिखनी नहीं आती है। उर्दू हम बदनसीबों को लिखनी आती है ना, इसीलिए किताबत करते करते कमर झुक गई है, आंखें अंधी हो गई हैं।

0: यूसुफिया भाई, तुम्हारा मजमून पूरा पढ़कर ही मैं प्रेस गया था।
1: कैसा लगा आपको?
0: मुझे बेहद पसंद आया। साइन बोर्डों पर टंगी सनती तरक्की। अब बात बनी है
1: सर, ये नई रिपोर्ट सिर्फ एक जिले के बारे में है, मगर हर जिले में कमोबेश यही हालत है। लेने वालों ने लाखों रुपए सब्सिडी और आसान शर्तों पर कर्जे के तौर पर लिए, मगर ना तो कहीं कोई फैक्ट्री बनी है और ना ही कहीं कोई एंटरप्राइज शुरू हुआ है। बस जगह जगह साइन बोर्ड नजर आते हैं, फला मिल फला इंडस्ट्री।
0: मुझे अब पक्का यकीन है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में तुम जल्द ही अपने लिए एक मकाम हासिल करोगे।
1: शुक्रिया।
0: हाँ, याद आया, कल ही एक लोकल रोजनामे में खबर छपी थी कि शहर के पाई इलाकों में आंतों की बीमारी से दर्जनों लोग मर गए। बीमारी के लिए जो आजमूदा दवाइयां हैं वो कारगर साबित नहीं हो रही हैं। डॉक्टर भी हैरान हैं कि माजरा क्या है वगैरह वगैरह।
1: मैं तो खुद ही भुगत चुका हूं दिलवीर साहब। डॉक्टर ने पहले जो एंटीबायोटिक मेरी मिसिस के लिए तजवीज किया था वो बिल्कुल बेअसर रहा।
0: कहीं ऐसा तो नहीं है कि नकली दवाइयों के मुल्क गिर रैकेट ने अपने खूंखार पंजे यहां तक फैला दिए हों? इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट तैयार कर सकते हो?
1: कर तो सकता हूं, मगर अभी थोड़ा परेशान हूं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम मकान की तामीर शुरू नहीं कर पा रहे हैं। सोचता हूं अगर मेरे दोस्त ने हमें अपने मकान में मुफ्त रहने नहीं दिया होता तो हम मकान का किराया कहां से लाते?
0: क्या ये वही शख्स तो नहीं जिसे तुम प्रिंस कहते हो?
1: जी हाँ, आपने ठीक ही समझा।
0: बड़ा हातमताई है तुम्हारा ये शहजादा। वैसे करता क्या है?
1: बंबई में कंसल्टेंसी चलाता है, कई कंपनियों में उसके शेयर्स हैं, कई शहरों में कोठियां भी हैं। और हम हैं कि हमारी तकदीर में अपना एक छोटा सा मकान भी नहीं है।
0: तकदीर तकदीर, मैं कहता हूं ज्यादा बकवास मत करो, मेहनत करो, मेहनत से ही मकान भी बनेगा और तकदीर भी बनेगी। हमें अगर तकदीर ही सब कुछ होती तो अल्लाह मियां ने हमें हाथ पांव क्यों दिए होते? हाथ पांव दिए हैं इसका मतलब यही है कि उसने हमें मेहनत करने का हुक्म दिया है। वैसे तुम भी अब मेहनत करने लगे हो। अखबार की माली हालत

0: तो अच्छी नहीं है, पर फिर भी इस महीने से मैं तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए बढ़ाता हूँ।
1: क्या 500 रुपए? दिलगीर साहब, आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिलगीर साहब।
0: हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। आवाज करता हूँ, कहिए मिजाज कैसे हैं? नहीं साहब, आप इसे बदतमीजी नहीं कह सकते। जी नहीं साहब, ये तेज कलामी भी नहीं है, ये सिर्फ हकीकत बयानी है। नहीं नहीं, मुझे आपसे तफाक नहीं। जब जमाना ही कड़वा हो तो मेरा अखबार मीठा कैसे हो सकता है? एक शेर अर्ज करता हूं, लगते है तलखिए मै अयाम वरना फैज, हम तलखिए कलाम पर मायल जरा न थे। खुदा हाफिज।
1: दिलगीर साहब, मैं आपकी इस दिलेरी, दिलावरी और दिलदारी पर फिदा हूं। आजकल कौन ऐसा है जो इस तरह हक और इंसाफ के लिए लड़ता हो? अगर आप मेरी तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ाने की बजाय 500 रुपए घटाएंगे तब भी मैं आपकी रहनुमाई में ही काम करूंगा।
0: असलम मियां।
2: जी हुजूर।
0: अरे भाई जल्दी जाकर नीचे से दो चाय और खाने के लिए कुछ ले आओ, हमारे यूसुफ मियां बहुत जज्बाती हो गए हैं।

0: जज्बाती मत बनो यूसुफ, डोंट बी सेंटिमेंटल। अगर मेरा यहाँ आने का प्रोग्राम होता तो क्या तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करता? अरे ये तो अचानक हो गया। असल में मेरा हांगकांग का प्रोग्राम था जो लास्ट मोमेंट पर पोस्टपोन हो गया। अब भाई मैंने सोचा कि बंबई में खाली बैठकर क्या करेंगे, देयर वॉज नो फन। अरे हाँ, अभी तक फोन क्यों नहीं लगा?
1: जनवरी तक की बुकिंग क्लियर हो गई है प्रिंस। हमारी बारी आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।
0: थोड़ा नहीं, बहुत वक्त लगेगा। हमारी जनरल कैटेगरी में बुकिंग है ना। यू डू वन थिंग, टेक मनी और आज ही ड्राफ्ट बना लो। चेंज इट इनटू ओवाईटी स्पेशल कैटेगरी।
1: फिर तो कल परसों तक ही मिल जाएगा।
0: नहीं मिलेगा यूसुफ, यू आर ए सिंपलटन रियली। कल परसों तक ही मिले इसके लिए कुछ और जोर लगाना पड़ेगा।
2: मैं भी हंसी की वजह जान सकती हूँ, या पहले मैं भी हंसी में शामिल हो जाऊँ और फिर पूछूँ कि बात क्या है।
0: नजमा, व्हाट इज ऑल दिस? कौन खाएगा ये सब?
1: अरे ये है ही कितना, तुम जितना खा सकते हो खाओ, बाकी जो बचेगा मैं खा लूंगा।
0: तुम खाओगे?
1: हाँ।
0: अरे खाने वाले तो और ही होते हैं, खाने और फिर खाकर हजम करने के लिए मुंह और मैदा ही नहीं, दिल और गुर्दा भी चाहिए।
1: हाँ प्रिंस, मुंह मैदा और दिल गुर्दा सही होने के बावजूद मैं वाकई इन खाने वालों में से नहीं हूँ।
0: अब वो नजमा कहाँ गई?
1: चाय लाने गई है। अरे ये लो, आ ही गई।
2: अरे आपने तो कुछ खाया नहीं।
0: अरे खा रहा हूँ, धीरे धीरे खाऊंगा तो ज्यादा खा लूंगा।
2: चीनी ठीक है?
0: हाँ, तुमने अपने हाथों से चाय बनाई है नजमा, मेरा ख्याल से चीनी की जरूरत ही नहीं है।
1: तुमने बताया नहीं कि हांगकांग किस सिलसिले में जा रहे थे?
0: वो वैसा है कि मैं एक ट्रेवल एजेंसी खोलने की सोच रहा हूँ। इट विल मेनली कैटर टू साउथ ईस्ट एशियन टूरिस्ट।
1: बड़ा ही नेक ख्याल है।
0: मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और कश्मीर के लिए एजेंसी का जोनल ऑफिस यहीं रखूं।
1: ये भी बहुत नया ख्याल है।
0: है तो सही, मगर
2: मगर क्या?
0: जोनल ऑफिस के इंचार्ज, मेरा मतलब है कि जोनल मैनेजर के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो एफिशिएंट भी हो, एनर्जेटिक भी हो और डिपेंडेबल भी हो।
2: एफिशिएंट होने से ज्यादा उसका डिपेंडेबल होना जरूरी है।
0: यूसुफ, इसके लिए मुझे तुमसे बेहतर आदमी कहाँ मिल सकता है? मगर बदकिस्मती यही है कि तुम्हें रख ही नहीं सकता। अपनी खुदगर्जी के लिए मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता।
1: मैं समझा नहीं।
0: वो यार बात यह है कि शुरू शुरू में मैं 5-5.5 हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता।
2: 5-5.5 हजार? आपको मालूम है दिलगीर साहब इन्हें कितना देते हैं?
0: नहीं तो हाउ डू आई नो?
2: 2 हजार।
1: 2 हजार नहीं, 2.5 हजार। इस महीने से उन्होंने 500 बढ़ा दिए।
0: और 2.5 हजार पाकर तुम खुश हो?
1: तुम्हें नहीं लग रहा है प्रिंस, दरअसल जॉब सेटिस्फेक्शन असल में सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है।
0: व्हाट जॉब सेटिस्फेक्शन यार। सुनो यूसुफ,

0: तुम अभी इसी वक्त इस नौकरी को लात मारो और मेरे जोनल ऑफिस का काम संभालो।
1: आपके लिए तो ये बड़ी से बड़ी चीज को लात भी मार सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर दिलगीर साहब को नहीं छोड़ सकते।
2: नजमा प्लीज।
0: शी इज राइट। दरअसल तुम्हें उस दिलफेंक साहब
2: दिलगीर साहब
0: वही दिलगीर साहब के साथ मिलकर शरीफ लोगों को नंगा करने में मजा आता है।
2: नहीं प्रिंस, हम किसी को नंगा नहीं करते, हम तो सिर्फ सच्चाई पर से पर्दा हटाते हैं। अब यही नकली दवाओं के रैकेट को ही ले लो।
0: व्हाट?
2: हाँ, इन नकली दवाओं ने नजमा को मौत के मुंह में धकेल दिया था।
1: दवाई असली हो या नकली, बचाने या मारने वाला तो अल्लाह ही है। प्रिंस, आप इन्हें क्यों नहीं समझाते कि इन फिजूल की बातों पर कागज और वक्त दोनों जाया करने से बेहतर है कि आदमी ढंग का कोई काम करके कुछ रुपए पैसे जुटा ले और अपने लिए कम से कम एक छोटा सा घर बना ले।
0: क्यों? इस घर में तुम लोगों को कोई तकलीफ है क्या?
1: नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं आप। जैसा आराम हमें आपके घर में मिला है, वैसा शायद हमें अपने घर में भी नहीं मिल सकता। मगर मकान तो आखिर बनवाना ही है ना। देखिए ना, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, इसलिए जितनी जल्दी पूरा हो जाए उतना ही अच्छा है।
0: यू आर राइट। यूसुफ, बुरा नहीं मानना, तुम नजमा जैसी समझदार औरत के काबिल ही नहीं थे। भाई, रुपए पैसे का कोई इंतजाम क्यों नहीं करते हो?
2: वो क्या है प्रिंस, के एक हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी से लोन मिल रहा है, मगर उसके लिए पहले अपने पैसों से प्लिंथ खड़ी करनी होगी। कुछ अजीब सी शर्त है उनकी।
0: नो प्रॉब्लम। मिसेस नजमा यूसुफ। नजमा, मेरे ख्याल से इससे काम चल जाएगा।
1: 30,000 का चेक?
0: भाई यूसुफ, बुरा नहीं मानना, मैंने चेक नजमा के नाम से लिखा है।
2: अरे नहीं नहीं, ये तो तुमने अच्छा ही किया, जमीन भी नजमा के ही नाम है, मकान भी उसके ही नाम से बनेगा।
1: मगर ये चेक आपने क्यों काटा? नहीं मतलब कि हमने तो आपसे नहीं कहा कि हमें रुपयों की जरूरत है।
0: अरे भाई, ये भी लोन ही है, हमें भी एक फाइनेंस सोसाइटी ही समझो। हमारी सोसाइटी की शर्तें कुछ नरम हैं। इंटरेस्ट इज नॉमिनल, यानी कि अ ग्रैंड डिनर इन द न्यू हाउस।
1: क्यों नहीं?
0: और रहा सवाल रिपेमेंट का, उसके लिए कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, जब चाहो तब कर सकते हो। और हाँ, अगर यूसुफ मियां को मेरे जोनल ऑफिस का काम संभालना मंजूर हो तो ये रकम थोड़ी थोड़ी करके इनकी तनख्वाह और बोनस वगैरह में से कटती रहेगी।
1: मगर कोई अगर मगर नहीं।
0: अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझाने के लिए मुझे उस कहानी का रीच नहीं बनना पड़ेगा जिसे तुम टीचर वगैरह वो बच्चों को अक्सर सुनाया करते हो।
1: तुम

0: एक बात कहूं दिलगीर साहब?
1: कहो।
0: कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे ख्वाबों, इरादों और जद्दोजहद के बावजूद ये दुनिया जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहेगी, कहीं कुछ नहीं बदलेगा।
1: यूसुफ, ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनके मफादात और मुराद इसी निजाम में, इसी स्टेटस को में महफूज हों। वही ये भी कहते हैं कि पत्थर की दीवार के साथ सर टकराओगे तो दीवार में जरा सी जुम्बिश भी नहीं होगी, तुम्हारा सर जरूर फट जाएगा। मगर दिलगीर कहता है कि पत्थर की दीवार के साथ टकराने का अमल जारी रखो, सर लहू लुहान हो जाए तो होने दो।
0: दिलगीर साहब, मेरा सर भले ही लहू लुहान हो जाए मगर वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, ना तो दुश्मन के आगे और ना ही दोस्त के आगे। A friend in need is a friend indeed, जैसा घिसा पिटा तिकरा दोहराने वाले दोस्त के आगे भी नहीं।
1: शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, हम बेकरार हैं आवाज के असर के लिए।

अभी आप सुन रहे थे ड्रामा, उनवान था नकारा। तहरीर जनाब हरे कृष्ण कॉल की थी और पेशकश थी सरफराज अहमद की। इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा आज दिन में 3:30 पर नशर किया जाएगा। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कोनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोबगे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में भारत की तरक्की के सफर को न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इसके पड़ोसी मुल्कों और वसीतर आलमी जुनूब के लिए भी अहमियत का हामिल करार दिया है। भारत और घाना ने साइंसी तहकीक, जरात और तालीम के शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने के लिए दो मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। एक तेल टैंकर में जिसमें अमले के 23 भारतीय अरकान सवार हैं, आग लग गई है। यह आग रूस के साहिल से कुछ दूर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद लगी है। अमले के सभी अरकान को बचा लिया गया है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैन अल-अक्वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोबगे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में भारत की तरक्की के सफर को न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इसके पड़ोसी मुल्कों और वसीतर आलमी जुनूब के लिए भी अहमियत का हामिल करार दिया है। एक हिंदी रोजनामे में शाये एक मजमून में जनाब तोबगे ने कहा कि विकसित भारत के तसव्वुर के मुजमरात खासतौर पर भूटान जैसे मुल्कों के लिए भारत की सरहदों से भी आगे हैं। जनाब तोबगे ने भारत के पड़ोसी मुल्कों को बैन अल-अक्वामी सरगर्मियों के मरकज में जगह देने वजीर आजम के तरीके कार को सराहा। उन्होंने आलमी जुनूब की आवाज से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंसों को शामिल करने और G20 में एक रुकन के तौर पर अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के भारत की कामयाब पहल समेत आलमी जुनूब के मफादात की रहनुमाई करने की जनाब मोदी की कोशिशों की तारीफ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वक्फ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर के दर्शन किए, मुल्क और उसके 140 करोड़ शहरियों के लिए दुआ की। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने खुद को और ज्यादा ताकत देने की दुआ भी की ताकि वो लोगों के लिए खुद को और ज्यादा वक्फ करके दिन रात काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद 25 साल में कायम हुआ है और इस अरसे में जो तजुर्बा हासिल हुआ है वो एक अजीम असासा है। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम की खिदमत को अपनी जिंदगी का वाहिद मकसद बना लिया है और उन्होंने सियासत को कौम की खिदमत के मानों में अपनाया है। उन्होंने वजीर आजम को लगातार खुद को वक्फ करते हुए अंथक मेहनत के साथ कौम की खिदमत के 25 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत और लगातार तरक्की का एक आले कार होना चाहिए। जनाब मोदी ने कल सेवा तीर्थ में मोबाइल मुआसलात की एसोसिएशन के आलमी निजाम GSMA के बोर्ड अरकान से बातचीत की। ये बातचीत इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले की गई है जो नई दिल्ली में आज से इस महीने की 10 तारीख तक मुनाकिद की जाएगी। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि सभी को टेक्नोलॉजी की फराहमी लाजमी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि समाज का कोई भी तबका पीछे नहीं रह गया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजिटल खिदमात को खासतौर पर आलमी जुनूब के लिए मुनासिब खर्च और काबिल रसाई बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बढ़ते हुए डिजिटल फर्क को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी को हर एक शख्स तक पहुंचाने की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की सलाहियत को खासतौर पर तरक्की पजीर

0: श्रेयस अय्यर ने 43 गेंदों में 102 रन बनाए। अब सीरीज का दूसरा मैच रांची में जुमे को खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोबगे ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में भारत की तरक्की के सफर को न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इसके पड़ोसी मुल्कों और वसीतर आलमी जुनूब के लिए भी अहमियत का हामिल करार दिया है। भारत और घाना ने साइंसी तहकीक, ज़राअत और तालीम के शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने के लिए दो मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। एक तेल टैंकर में जिसमें अमले के 23 भारतीय अरकान सवार हैं आग लग गई है। यह आग रूस के साहिल से कुछ दूर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद लगी है। हमले के सभी अरकान को बचा लिया गया है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैन अलाकवामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए,
2: सुनिए सुनिए
3: कहिए कहिए ना।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये नगमा था रॉकी फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले को सुनिए। फिल्म है प्रोफेसर प्यारे लाल।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा था झूठा कहीं का फिल्म से। इन्हीं दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज मलका गजल बेगम अख्तर के हवाले से ये प्रोग्राम है क्योंकि आज है उनका यौम पैदाइश। तहरीर है अशरफ उस्मानी की। साजो आवाज की दुनिया में बेगम अख्तर का नाम चांद सितारों के मानंद रोशन और ताबिंदा है। दुनिया आबो गिल में ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बेगम अख्तर ने गुलकारी के मैदान में नए आसमान पैदा किए। दुनिया से उनको गए अरसा बीत गया लेकिन आज भी वो अपनी आवाज की नगमगी के सबब दिलों पर राज करती हैं। बेगम अख्तर के नाम से मशहूर अख्तरी बाई बड़े सवेरे हिन्दू पाक की मकबूल तरीन मुखन्या थी। उनको दादरा ठुमरी और गजल गायकी में कमाल दर्जा महारत हासिल थी। बेगम अख्तर के बेमिसाल फन के एतराफ में हुकूमत हिंद ने पहले पद्मश्री और 1975 में बाद अजमर्द पद्म भूषण जैसे अहम एजाजात से उन्हें नवाजा। बेगम अख्तर की फन्नी खिदमात के एतराफ में उनको मलके गजल के खिताब से भी नवाजा गया। बेगम अख्तर की पैदाइश सूबा उत्तर प्रदेश की बड़ा दरवाजा कस्बा भदरसा जिला फैजाबाद में हुई थी। उनके वालिद असगर हुसैन एक कानूनदा और पेशे से वकील थे। उनके यहाँ दो जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया जिनका नाम जोरा अख्तर और बब्बी अख्तर रखा गया। बब्बी अख्तर बड़े होकर बेगम अख्तर के नाम से मशहूर हुई। दरअसल ये उनका असल नाम था। हालात की सितम जरीफी के सबब बेगम अख्तर अयाम तिफली में ही अपनी वालिदा के साथ अपने वालिद अजहर हुसैन से अलहिदा हो गई। इसलिए उनकी तालीम और तरबियत में बड़ा किरदार उनकी वालिदा मुश्तरी बेगम का है। बेगम अख्तर को बचपन से ही नगमा साज और संगीत का माहौल मिला। उन्होंने आंख खुलते ही मीठी नगमगी को अपने कानों में रस घोलता पाया। इसलिए नगमगी बेगम अख्तर के शऊर और तहत शऊर का हिस्सा बन गई। बेगम अख्तर महज 7 साल

थी जब उन्होंने चंद्राबाई के गीत गुनगुनाने शुरू कर दिए थे। चंद्राबाई अपने जमाने में एक मशहूर थिएटर से वाबस्ता कलाकार थी। बेगम अख्तर पटना बिहार के सारंगी वादक उस्ताद इमदाद खां और बाद में पटियाले के अता मोहम्मद खां के यहां जेर तालीम रही। बेगम अख्तर की जिंदगी के इब्तदाई माहो साल साजो आहंग की तालीम और तरबियत में गुजरे। बाद उन्होंने अपनी वालिदा मुश्तरी बेगम के साथ कलकत्ता के लिए रखते सफर बांधा। उन्होंने लाहौर के उस्ताद मोहम्मद खां और उस्ताद अब्दुल वहीद खां जैसे क्लासिकल गुलूकारों से संगीत की तालीम हासिल की और आखिरकार बेगम अख्तर उस्ताद जानू खां की बाजाबता शागिर्दा मुकरर पाई। बेगम अख्तर ऐसे अजीमुशान असातिज़ा के जेर तरबियत संगीत की तालीम हासिल करके कुंदन बन चुकी थी, लेकिन उनका जौहर खुलकर अभी मंजरे आम पर नहीं आया था। 7 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक वो मुतवातिर फन की बारीकियों को अपने में जज्ब करती रही और फिर 15 साल की उम्र में एक ऐसा मौका भी आया कि एक संगीत प्रोग्राम में उनका सामना सरोजनी नायडू जैसी अजीम हस्ती से हुआ। बेगम अख्तर ने इस मौके पर पहली बार अवामो खवास के सामने खुलकर अपने फन का मुजाहिरा किया। बेगम अख्तर की नगमगी और हुनर ने सरोजनी नायडू को मुतासिर किया और वो बेगम अख्तर की सतश किए बगैर न रह सकी। बेगम अख्तर का शुमार बड़े सगीर हिंदू पाक की अव्वलीन गुलूकाराओं की फहरिस्त में आता है। उनकी गजल की मकबूलियत इस कदर बामे उरूज तक पहुंची कि उनको अवामो खवास के जरिए मलके गजल के नाम से याद किया जाने लगा। बेगम अख्तर की मुतरन्निम और पुरकशिश आवाज नीज जाजिब नजर सरापे के सबब इब्तदाई जमाने में ही उनको फिल्मों में काम करने का मौका नसीब हुआ। उन्होंने ज्यादा वक्त फिल्मों में काम नहीं किया क्योंकि उनका ज्यादा रुझान भारतीय क्लासिकल संगीत की जानिब था, इसलिए कुछ मुद्दत फिल्मों में काम करने के बाद ग्लैमर से किनारा करते हुए क्लासिकल संगीत में उन्होंने अपना मुस्तकबिल तलाश किया और उसके बाद बेगम अख्तर क्लासिकी और सेमी क्लासिकी गीत संगीत की दुनिया का एक अजीम नाम वाकई हुआ। उन्होंने इसी मैदान में अपना करियर बनाया। बेगम अख्तर ने 20वीं सदी की इब्तदाई दहाई में काम किया। 1933 में कलकत्ता की ईस्ट इंडिया कंपनी में किंग फॉर ए डे के नाम से फिल्म बनाई। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में अपनी मुतरन्निम आवाज भी दी। उस दौर में ये आम रिवाज था कि जो अदाकार पर्दे सीनी पर अपने आप को पेश करते थे उस फिल्म के गाने भी वो खुद ही गाया करते थे। बेगम अख्तर ने भी उसी रिवाज के मुताबिक फिल्मों में काम भी किया और अपनी आवाज से उन्हीं फिल्मों में सहर भी पैदा किया। कलकत्ता में कुछ वक्त गुजारने के बाद बेगम अख्तर तहजीब की सरजमी लखनऊ वापस आ गईं। लखनऊ में रहते हुए बेगम अख्तर का राबता मारूफ फिल्मसाज और हिदायतकार महबूब खान से हुआ। 1942 में महबूब खान की फिल्म रोटी तैयार हुई, उसमें बेगम अख्तर ने 6 गजलें गाई। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था। किसी नामालूम वजह की बुनियाद पर फिल्म रोटी की 6 गजलों में से 3 गजलों को हटा दिया गया, लेकिन ये तमाम गजलें रिकॉर्ड हो चुकी थी जो मेगा ग्रामोफोन रिकॉर्ड की सूरत में उस वक्त भी दस्तयाब थी और आज भी दस्तयाब हैं। इसी दौरान बेगम अख्तर बम्बई छोड़कर दोबारा लखनऊ वापस आ गईं। 1945 में बेगम अख्तर ने लखनऊ के बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी रचा ली। कुछ अरसे गुलूकारी की दुनिया से दूर रहने के बाद उनकी गायकी का दूसरा सफर शुरू हुआ। बेगम अख्तर की आवाज में वक्त गुजरने के साथ साथ सहर अंगेजी बढ़ती रही। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा बेगम अख्तर की आवाज में गहराई और पुख्तगी पैदा होती रही। बेगम अख्तर ने गजल और दीगर असनाफ में अपने खास और मुनफरिद उसलूब के जरिए अपना खास मकाम पैदा किया। खास बात यह है कि तमाम तर तरक्याती मनाजिल तय करने के बावजूद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से हमेशा अपनी वाबस्तगी को कायम रखा। अहमदाबाद में अपने एक आखिरी प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अपनी आवाज को जिस दम बुलंदी देना चाहिए उसी वक्त वो बीमार हो गई।

0: जाने से सामयिन की फरमाइशों में इजाफा होता जा रहा था। बेगम अख्तर स्टेज पर बमुश्किल अपना फर्ज अदा करती रही। इसी दौरान उनकी बीमारी में इजाफा होता गया और अनजाने कार प्रोग्राम छोड़कर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मौलजिन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो सेहत याब न हो सकी और 30 अक्टूबर 1974 को इस दारे फानी से रुखसत हो गई। बेगम अख्तर को हुकूमत हिंद की जानिब से जहां पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स मिले, वहीं 1972 में संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड भी उनको पेश किया गया। बेगम अख्तर ने साजो आवाज की दुनिया में जो महारत और बुलंदियां कायम की हैं, दुनिया उनके कायल है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था बेगम अख्तर, तहरीर थी जनाब अशरफ उस्मानी की। बेगम अख्तर की यौम पैदाइश के सिलसिले में ये प्रोग्राम आकाशवाणी की उर्दू सर्विस ने नशर किया। हमारी नशरियां जारी है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर।

0: आज का होटा राज फिल्म का नगमा आपने कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में सुना। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत के तौर पर 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वक्फ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाइयों और जम्मू कश्मीर के बारे में इस्लामी टाउन तंजीम के तबसरे को मुस्तरद कर दिया है। भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोबगे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत की तरक्की के सफर को न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इसके पड़ोसी मुल्कों और वसीतर आलमी जुनूद के लिए भी अहमियत का हामिल करार दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैन अवी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दत कार दो हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन 2000 में जनाब मोदी ने पहली मरतबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आजम बने थे। नायब सदर जमहूरिया सीबी राधाकृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने कहा कि आवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वक्फ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर के दर्शन किए, मुल्क और इसके 140 करोड़ शहरियों के लिए दुआ की। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने खुद को और ज्यादा ताकत देने की दुआ भी की ताकि वह लोगों के लिए खुद को और ज्यादा वक्फ करके दिन रात काम कर सकें। उन्होंने कहा कि आवाम का एतमाद 25 साल में कायम हुआ है और इस अरसे में जो तजर्बा हासिल हुआ है वह एक अजीम असासा है। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आवाम की खिदमत को अपनी जिंदगी का वाहिद मकसद बना लिया है और उन्होंने सियासत को कौम की खिदमत के मानों में अपनाया है। उन्होंने वजीर आजम को लगातार खुद को वक्फ करते हुए अनथक मेहनत के साथ कौम की खिदमत के 25 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाइयों और जम्मू कश्मीर के बारे में इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के तबसरे को मुस्तरद कर दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असेंबली की 6ठी कमेटी में लोकसभा रुकन बिप्लब कुमार देव ने कहा कि ओआईसी मजलूम और जालिम के दरमियान फर्क करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान से फैलने वाली सरहद पार दहशतगर्दी से अपने लोगों की हिफाजत करने का हक हासिल है। भारत और घाना ने साइंसी तहकीक तालीम सलाहियत साजी जरायी तहकीक और तालीम के शोबे में बाहमी ताउन को मुस्तहकम बनाने की खातिर दो मुफाहमत नामों का तबादला किया है। यह पेशरफ्त वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर के घाना के दौरे के दौरान हुई है क्योंकि दोनों ममालिक जुनूब से जुनूब के ताउन को मजीद बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। डॉ जयशंकर ने घाना के अपने मनसब के साथ ये मुफाहमतनामे किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब डॉ जयशंकर ने बताया कि इन मुआहिदों में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ घाना के दरमियान तालीम के शोबे में ताउन साइंसी तहकीक और सलाहियत साजी और जरई तहकीक की भारतीय कौंसिल और घाना के CSIR फसलों की तहकीक से मुतालिक इदारे के दरमियान जरई तहकीक और तालीम के शोबे में इश्तराक का अहाता किया गया। इस मौके पर भारत घाना जामे शराकतदारी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत के तौर पर 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि आवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वक्फ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाइयों और जम्मू कश्मीर के बारे में इस्लामी तआवुन तंजीम के तबसरे को मुस्तरद कर दिया है। भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोबगे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में भारत की तरक्की के सफर को न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इसके पड़ोसी मुल्कों और वसीतर आलमी जनूब के लिए भी अहमियत का हामिल करार दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है और मर्दों के क्रिकेट में पहले टी20

जी हाँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि आपको भी हमारी याद आ रही है और हमें भी आपकी आ रही है, तो क्या बात है। सबसे पहले जो मैसेज किया है वो है डोल राणा जी ने। जी हाँ डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से आप हमारे आज के फेवरेट श्रोता घोषित हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे हमारे फेवरेट श्रोता सभी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ये गेम होना बहुत जरूरी है, इससे कनेक्शन हमारा आपका जुड़ता है। जी हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं 1982 की रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर। तो ये है कहानी एक ऐसे लड़के यानी कि अनिल की, जिसके पास दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, मगर उसके पास है एक सपना। जी, और इसके निर्देशक जो थे वो हैं बब्बर सुभाष जी, और डिस्को संगीत दिया है बचबीर लहरी जी ने, और मुख्य भूमिका जो निभाई थी जिम्मी जी, अनिल के किरदार निभाया मिथुन चक्रवर्ती साहब ने। कहानी शुरू होती है उसकी मां के संघर्ष से। एक अमीर अहंकारी व्यक्ति शर्मा उनकी मां पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा देता है। अनिल का बचपन गरीबी में दर्द में बीता, बड़ा होने पर एक स्ट्रीट परफॉर्मर बनता है। एक दिन एक प्रसिद्ध संगीतकार प्रबंधक डेविड ब्राउन उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे एक नया नाम जिमी देते हैं। जिमी अपनी मेहनत और शानदार डांस के दम पर फर्श से अर्श तक पहुंचता है कुछ इस तरह।

तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ गाओ। जी हाँ, रेडियो जिसने अभी अभी ऑन किया है, हम बता दें कि आप वैसे तो रेडियो ऑन करके ही पता चल गया होगा आपको कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं आज। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं डिस्को डांसर फिल्म। जी, और यह कहानी को जब हम किसी जिम्मी एक शानदार स्टार बन जाते हैं और कहते हैं ना कि कभी कोई रास्ता आसान नहीं होता, कहानी में मोड़ तब आता है जब इस फिल्म का खलनायक जिम्मी को के रास्ते के से ना हटाने की कोशिश करता है और उनके गानों में मुश्किलें पैदा करता है। उसकी मां की दुखद मृत्यु भी हो जाती है। अंत में जिम्मी अपने गानों और डांस के जरिए खलनायक के सारे षड्यंत्रों को बेनकाब करता है और आखिर में जीत सच की ही होती है। और अब हम सुनते हैं दुनिया भर में धूम मचाने वाला उषा उत्तप और बप्पी दा का ये संगीत गीत। खूबसूरत सा, और हमारे जो श्रोता हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जो हमें भेज रहे हैं मैसेज। जिन्होंने अनीता जी हमें मैसेज कर रही हैं कि उनका कार्यक्रम सुनती हैं और अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मसूर हसन जी ने हमें मैसेज किया है, और इसी तरह से सुदर्शन शाह, स्वर्ण सिंह दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज, भरत कुमार, ज्योति, मक्कण, मन्नत, भरत, पिंगा वाला चौक, इन्होंने जलंधर से हमें संदीप जी ने किया है हमें मैसेज, और पूनम गंगेजा जी ने हमें मैसेज किया है, निमित, और इसी तरीके से हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शन गौर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, गवेता गौर का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। आप सुनते हैं ये अगला नगमा।

जी हाँ, ये कितना खूबसूरत सा सॉन्ग आपने सुना उषा उत्तम और बपिदा की आवाज का। और इसी तरह से इसमें बहुत सारे गीत हैं जो कि मन करता ही सुनते रहे ना। और अगला जो गीत मैं लेकर आ रही हूँ वो है पार्वती खान जी ने गाया है, और ये गीत अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पॉपुलर हुआ। कहा जाता है कि रूस में मिथुन चक्रवर्ती और उनके गाने इतने लोकप्रिय हुए कि एक समय रूस को के जो प्रधानमंत्री है उनकी अपनी रैली भी रद्द करनी पड़ी। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। सोवियत रूस में फिल्म में 90 और यानी कि 94 करोड़ की कमाई करी और वहां पे कम से कम 12 करोड़ के टिकट बिके। लगभग 2 करोड़ से 50 लाख के बजट में बनी ये फिल्म वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया। सोवियत संघ में जबरदस्त सफलता और मिथुन दा की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनको इस किरदार जिमी के नाम से ही पहचाना जाने लगा। कहते हैं ना, कोई भी भारतीय रूस वहां जाता और रूस में जैसे ही जाता तो स्थानीय लोग जो गाना गाते वो ये गाते। क्या गाते सुनते हैं।

यस जिमी जिमी कितना मस्त ये जो गीत था और सब जगह किस तरीके से पॉपुलर हुआ वो सभी जानते हैं। और हम इस फिल्म की बात कर रहे थे, इस फिल्म के निर्देशक जो निर्माता है बब्बा सुभाष, संगीतकार बप्पी लहरी, गीतकार अंजाम।

बहुत सारे मैसेज आए हैं, जबकि मेहर अरोरा जी का मैसेज आया है, राजकुमार दूदी जी का, हमें राजकुमार प्रमोद कुमार जी का मैसेज आया फरासी जलगांव से, भारत कुमार का, ज्योति मन्नत मकड़ कमल पिंगा वाला चौक से, उन्होंने जलंधर से किया, सुरेश डावर जादवर का भी हमें मैसेज आया है जादव जी का, और धर्मेंद्र छिप्पा जी का, कपिल ईशान पूजा परिहार, और पंजाब से हरजिंदर जसवीर सीता गीता, और इसी तरह से हमें आर कुमार जी का, पिंकी लवली आरती मिंटू और पंजाब से कर रहे हैं, और फिर इसी तरह से हमें जामुन देवी साहू, बबलू साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत बेबी, आराध्या हमें छत्तीसगढ़ से मैसेज कर रहे हैं, सदानंद और सदानंद जी हमें कर रहे हैं, सुशीला देवी कर रहे हैं, कुमार गौरव जी कर रहे हैं हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तुलसी मस्किन जी ने किया है हमें मैसेज, और बहुत बहुत शुक्रिया शादरा से। फारूक अली खान जी ने हमें मैसेज किया है, मस्किन दादाजी ने मैसेज किया है, उन्हें यह सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हमें मैसेज कर रहे हैं मुंडा डोला आज छत्तीसगढ़ से, डोमेंद्र नेतान और गंगदेश्वरी नेताम जी ने, और उन्हें इसी तरीके से बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय ढिंगिया जी का हमें मैसेज आया, सुवर्ण सिंह जी का, हिमरा हिरमानी वर्मा, कमलकांत गुप्ता, धर्मेंद्र छिप्पा जी का मैसेज आया है, और इसी तरीके से संजय ढिंगिया जी का भी मैसेज आया है, पीएस नावस्कर जी का भी मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से पार कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा, और ये सुनते हैं अगला नगमा।

अभिषेक मोहम्मद जी का मैसेज भी हमारे पास आया है और पी एस नावस्कर का रोजी डे कास्ट्रो का मैसेज आया है। सुदर्शन मुखी, धर्मेंद्र जी, तुलसी जी, पी एस नावस्कर, मेहर अरोरा जी और स्वर्ण सिंह, संजय ढींगिया, अनीता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब दोस्तों समय को इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपसे कुछ और देर जुड़ पाऊं, तो यानी कि रैना धवल को दीजिए एक ही फिल्म कार्यक्रम से इजाजत। फिर मिलेंगे नए किस्से, नई कहानी, नए गीतों के साथ, और मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट, आपके दिल को दे सुकून, एक ऐसा काम जरूर करें। एक नए नागरिक बने, दूसरों को माफ करने का दिल रखें और अच्छे नागरिक बनते हुए आगे बढ़े, और सुनते रहे आकाशवाणी न्यूज, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। और अगला जो कार्यक्रम है 2:30 बजे आप जुड़ेंगे अंजू जी से, और उसी उन्हीं के साथ 3 बजे भी आप सुनेंगे मैटिनी मेलोडी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के बुलेटिन में अमन देव। पहला खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियां से सख्त मेहनत सदका भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने अपने सपने को जरूर पूरा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ा के 5.5% कर दिया है। भारत ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में दहशतगर्द ढांचे विरुद्ध भारत की कार्रवाई से इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की टिप्पणियों को रद्द किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत की अफ्रीका भाईवाली न सिर्फ वर्तमान ही सगो आने वाली पीढ़ियों भी होगी। रूस के दक्षिणी तट से यूक्रेन वालों एक तेल टैंकर को निशाना बनाते किए गए ड्रोन हमले में भारतीय चार्ट दल के कई मैंबरों को सुरक्षित बचा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियां से सख्त मेहनत सदका भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को जरूर पूरा करेगा। अज नई दिल्ली विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत जो कदे नीतिगत खड़ोत की चर्चा से जुड़ा हुआ है हुण अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों का सामना करने की योग्यता लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती, आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 25 साल दौरान लोगों को उन्होंने मिला विश्वास और इस समय दौरान उन्होंने प्राप्त हुआ तजर्बा उन्होंने सब से बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के लिए बड़े टीचे निर्धारित करने का समय। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी राजनीतिक यात्रा देशवासियों के टूट विश्वास और समर्थन का नतीजा है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: उन्होंने कहा कि 2015 से 2025 दहाके में खेतीबाड़ी क्षेत्र ने आजादी तो बाद सब तो निरंतर विकास दर्ज किया है। श्री मोदी ने कहा कि अजि तब्दीली उदो संभव है जदों इरादा साफ हो नीतियां चंगी तरह प्रभाषित हो। श्री मोदी ने कहा कि जदों उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री वजह सहु चुकी थी तो उन्होंने कदे सोचा भी नहीं कि वह इस मील पत्थर से पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा लोगों के टूट आशीर्वाद और समर्थन संभव हुई है। इस मौके से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनतक सेवा को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया और राजनीति को राष्ट्र की सेवा के साधन मानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र के 25 साल निरंतर समर्पित और अणथक सेवा करने की बधाई दी। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों नौजवानों किसानों और औरतों पर केन्द्रित कई योजनाएं लागू की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 साल की जनतक सेवा को एक सुनहरी इतिहासक दिन दसिया। गुरूग्राम विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में बोलदिया श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में धारा 370 को हटाने नक्सलवाद का अंत और देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर अगले महत्वपूर्ण काम पूरे किए गए हैं। इधर पंजाब विच भी कई थावां ते इस मौके प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मोहाली विखे बीजेपी के मुख दफ्तर च सेवा संकल्प यात्रा प्रोग्राम कराया गया और प्रधानमंत्री के संबोधन सुनिया गया। इस मौके पंजाब बीजेपी के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने प्रधानमंत्री के 25 साल के कार्यकाल दौरान गुजरात और हुण भारत में विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनाने की गल करदे कहा कि देश हुण विकसित भारत के टीके वल कदम बढ़ा रहा है। ये खबर आकाशवाणी से सुन रहे हो। सड़क चैनल @AIR RN जलंधर। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 3.5 साल

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही देर में सुनेंगे हम पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में समाचार। तो आइए सुनते हैं समाचार।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब किया। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की इस जरूरत पर जोर दिया कि अपने नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बनाए। आरबीआई ने 4 साल की मुद्दत में पहली बार रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। उसने माली साल 2027-28 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार की शय तरक्की 7.1% रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और आज भारत ने फिजी में COP31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तर इकदाम और पेरिस मुआहदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वक्फ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर के दर्शन किए, मुल्क और इसके 140 करोड़ शहरियों के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने खुद को ज्यादा ताकत देने की दुआ भी की ताकि वो लोगों के लिए खुद को और ज्यादा वक्फ करके दिन रात काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद 25 साल में कायम हुआ है और इस अरसे में जो तजर्बा हासिल हुआ है वो एक अजीम असासा है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि एक वक्त में पॉलिसी के मफलूज रहने पर मरकूज बातचीत अब भारत की बढ़ती ताकत और मज़ाहमत पर मरकूज है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दत कार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आज़म की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन साल 2000 में जनाब मोदी ने पहली मरतबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आज़म बने थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और इसे सुनहरी और तारीखी दिन करार दिया है। गुरुग्राम में आज विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत में दफा 370 की मनसूखी, मानवाजियत का खात्मा और मुल्क के बुनियादी ढांचे को आला मयार सतह तक पहुंचाने जैसी अहम हसूलियाबियां हासिल हुई हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुहिम के हिस्से के तौर पर मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं जिसके तहत नौजवान अफराद सेवा ज्योति यात्रा निकालेंगे और मुकर्रा मकामात पर मशाल नस्क करेंगे। जनाब शाह ने सभी से बड़ी तादाद में यात्रा में शिरकत की अपील की।
1: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी ने गुजरात के सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का इनेकाद किया है। जनाब मोदी की अवामी खिदमत के 25 सालों में पहले गुजरात के वजीर आला और बाद में मुल्क के वजीर आज़म के ओहदे का अरसा शामिल है। पूरे गुजरात में यात्रा निकलने के मकाम पर नई दिल्ली से विकसित भारत संकल्प सभा का वजीर

0: Assembly 6th Committee, Lok Sabha MP Biplab Kumar Deb said those making the remarks were unable to distinguish between the victim and the perpetrator. He asserted that India has the right to defend its people against cross-border terrorism emanating from Pakistan. IMF Managing Director Kristalina Georgieva has called on countries, both rich and poor, to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality. Speaking in Singapore ahead of the IMF World Bank meetings in Bangkok next week, she said governments have the tools to address economic challenges but need to take necessary policy decisions without further delay. She also highlighted risks from the rapid expansion of artificial intelligence, including heavy investment in data centers, rising energy demand, and potential financial shocks if AI-related earnings fall short of expectations. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Lakhpati Didi Yojana.
1: The government is implementing the Lakhpati Didi scheme with the objective of economically empowering women in rural areas and increasing their income. The initiative aims to enable women associated with self-help groups to earn at least 1 lakh rupees annually through various sustainable livelihood activities. Women are being provided with facilities such as skill development training, financial assistance, access to credit, guidance for entrepreneurship and linkages with markets. The Prime Minister has said that the target is now to create 6 crore Lakhpati Didis across the country.
2: 3 crore behnon ko humne Lakhpati Didi banane ka lakshya tay kiya tha, usko paar kar liya. Ab hum 6 crore Lakhpati Didi banane ke lakshya ko lekar ke aage badh rahe hain. 3 crore nayi Lakhpati Didi banna matlab gramin arthavyavastha mein bahut bada badlav matrishakti ke dwara aane wala hai.
1: Shilpa Deshmukh, a beneficiary from Parbhani district, shared her experience with Akashwani.
3: Drone ki wajah se mujhe alag hi pehchan mili hai aur mere utpann mein badhat hui hai. Iski wajah se meri salana income 1 lakh rupaye se adhik ho gayi hai. Isliye mujhe ab sirf drone didi hi nahi balki Lakhpati Didi ke naam se hi bulaya jata hai.
1: Through the economic empowerment of rural women, the Lakhpati Didi initiative is strengthening families, villages and rural economy, contributing to the vision of Vikasit Bharat. Sanjit Thakur, Akashwani News, Chhatrapati Sambhajinagar.
0: India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura during the day. After the Met Department of Himachal Pradesh issued a yellow alert, the weather today has taken a turn once again. Snowfall is occurring in the state's high-altitude mountainous regions, while other areas are experiencing thunderstorms and rain. More from our correspondent.
4: Due to the activity of a western disturbance, the weather in Himachal Pradesh has shifted. High altitude areas are witnessing snowfall, while lower regions are experiencing hailstorms and thunderstorms accompanied by rain. There are also apprehensions of damage to crops. This precipitation has led to a drop in temperatures and an increase in the chill. Snowfall has occurred on the high peaks of Lahul Spiti, Pangi and Kullu, while the high peaks of Pir Panjal range, including the Rohtang Pass, are now draped in a blanket of snow. According to the Meteorological Center in Shimla, a yellow alert has been issued for thunderstorms and lightning in the district of Una, Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi, Shimla and Solan for the next 4 days, while light snowfall is expected in Kullu and Lahul Spiti. With Ritesh Kapoor's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says present government's policy focuses on solutions for all citizens, addresses Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar stresses the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. IMD forecasts heavy rainfall over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And India calls for stronger climate action and faster implementation of Paris Agreement at pre-COP31 meeting in Fiji today. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
2: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
5: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
6: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
5: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति

0: शक्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
1: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5

0: 5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
2: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझ कर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
1: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
3: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
5: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
3: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ SJ शंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्र।

0: नमस्ते चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम, नाम है जिसका एक ही कलाकार। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप सभी का इस प्रोग्राम में दिल से स्वागत करती हूँ। और आज एक ऐसे सितारे को लेकर आई हूँ जिसके गीत संगीत ने आज भी अपनी एक अलग ही खास जगह बना रखी है। कहते हैं ना कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती और सुरों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कभी कभी इन्हीं सुरों के बीच कोई ऐसी आवाज जन्म लेती है जो सिर्फ संगीत नहीं रचती बल्कि अपने समय की सोच को भी चुनौती देती है। तो आज की हमारी जो सितारा है वो एक ऐसी महिला है जिसने उस दौर में हिंदी सिनेमा संगीत की दुनिया में कदम रखा जब संगीत निर्देशन लगभग पूरी तरह पुरुषों के हाथ में था। तो क्या नाम है उनका? वैसे आपको बता दें कि आज यानी कि 7 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भी है। फिलहाल तो हम उन्हीं के संगीत से रचा एक गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। इस गीत को आप सुनिए, अंदाजा लगाइए, और जब आपको पता ही है कि अंदाजा आप लगा लेते हैं तो उसके बाद अपने संदेश आप हमें मेल करते हैं। हमारा मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। तो आपको सुनवा रही हूँ फिल्म बिन फेरे हम तेरे से रफी जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत। पहचानिए और अपने जवाब हम तक पहुंचा दीजिए।

जी हाँ, और आप भी हमारे कमाल के दोस्त हैं। देखिए, हमने सिर्फ एक गीत आपको पहुंचाया आप तक, और ढेर सारे सही जवाब हम तक पहुंच गए। क्या बात है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस सितारे की जिसका नाम है उषा खन्ना। आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मनोहर खन्ना गीतकार और गायक थे, यानी कि संगीत उनके लिए कोई भारी दुनिया नहीं थी, बल्कि बचपन से ही घर के वातावरण का हिस्सा था। और फिर आया साल 1959, फिल्म थी दिल देके देखो, संगीतकार थी उषा खन्ना, और यहीं से हिंदी सिनेमा को मिली एक ऐसी महिला संगीतकार जिसने आने वाले कई दशकों तक अपनी धुनों से श्रोताओं के दिल में जगह बनाई।

जी हाँ दोस्तों, उषा खन्ना का जो शुरुआती सफर था वो आसान नहीं था। एक महिला के लिए उस समय फिल्म संगीत निर्देशन की दुनिया में अपनी जगह बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उषा खन्ना ने साबित किया कि प्रतिभा का कोई जेंडर नहीं होता। उषा खन्ना को फिल्मकार एस मुखर्जी का समर्थन मिला और दिल देके देखो फिल्म उनके लिए फिल्म संगीत की दुनिया का दरवाजा खोलती थी। इसके बाद हम हिंदुस्तानी, शबनम, एक सपेरा एक लुटेरा, आओ प्यार करें, हवस बिन फेरे हम तेरे, साजन बिना सुहागन, आप तो ऐसे ना थे, सौतन जैसी अनेक फिल्मों में उनके संगीत की छाप दिखाई दी। उनका संगीत केवल एक जगह के गीतों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर जगह एक अलग ही खुशबू लेकर नजर आता था।

जी हाँ, उषाखन्ना का कि जो संगीत था वो भी इसी तरीके की अलग अलग खुशबू देता था, चाहे रोमांटिक गीत हो, दर्द भरे नगमे हो, चुलबुले गीत हो, या फिर जीवन की सच्चाई को बयान करते गीत हो। उषा खन्ना ने हर रंग को अपनी धुनों में जगह दी। एक तरफ उषा खन्ना एक की धुन थी जो आज भी सुनते ही पुराने दौर की याद दिला देती हैं, और यही वो खासियत है इनके संगीत की। वो अपने समय से निकलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक, कह सकते हैं हम, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उषा खन्ना के जो संगीत सफर था, इसमें महान गायक मोहम्मद रफी की आवाज का बहुत खास स्थान रहा है। रफी साहब ने उनकी धुनों पर कई यादगार गीत गाए हैं, और आज जो मैं आपको गीत सुनवा रही हूँ उसमें बहुत सारे गीत रफी जी की आवाज में भी हैं। और जब रफी साहब की आवाज उषा खन्ना की धुनों से मिली तो कई ऐसे गीत बने जिन्हें आज भी पुराने फिल्म संगीत के प्रेमी बड़े प्यार से सुनते हैं। तो अगला जो गीत है वो रफी साहब की आवाज में तो नहीं है, लेकिन लता जी की आवाज में है, और बहुत ही सुपरहिट गीत है फिल्म सौतन से।

सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और आज हम सितारा चुनकर लेकर आए हैं। नाम है उनका उषा खन्ना। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के एक प्रकाशन के अनुसार उषा खन्ना ने अलग अलग भाषाओं की 150 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया था। आज जब हम महिला संगीतकारों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उषा खन्ना ने ये रास्ता ऐसे समय में बनाया था जब फिल्म संगीत की दुनिया में पुरुषों का दबदबा था। उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने लगातार काम किया। उन्होंने केवल एक दो फिल्मों से अपनी पहचान नहीं बनाई बल्कि कई दशकों तक अपनी धुनों को जीवित रखा और शायद इसीलिए उषा खन्ना की कहानी सिर्फ एक संगीतकार की कहानी नहीं, ये कहानी है प्रतिभा की, हिम्मत की, लगन की और अपने सपने पर विश्वास करने की। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंचे हैं, उनको भी बस अब शामिल करने का वक्त आ गया है। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत सुलक्षणा पंडित और रफी साहब की आवाज में एंजॉय कीजिए।

से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश है वो पोटियल किला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा जी का आया हुआ है। मेरठ केंद्र से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी हमें सुन रहे हैं। पोटियल कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहिवीर जी हमारे साथ हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम जी हमारे साथ हैं। अंबागढ़ी चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवाना, आयशा सभी, अनस रेहान है। और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवरोशन जी का एक और संदेश आया है। ये हमारे पास संदेश आकाश गंडई टिकरी पारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर और दीपक ऋषभ जी का आया है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं ये। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन जी हमें सुन रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र जी, कपिल पूजा ईशान जी हैं। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। पश्चिमी जी हैं वो चाईबासा झारखंड से, शिवागो प्रेम कपिल शिवांश हमारे साथ हैं। रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से हमें सुन रहे हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा जसवीर जी जुड़े हुए हैं। और ये संदेश बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटी टॉमस, पिंकी लवली, आरती का आया है। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है, ये आकली दीवान से आया है, भाई रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी जी का। अगला संदेश पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु जी का है। मुकेश गोस्वामी, मधु जी, उच्च भट्टी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। चेमिरी कोलारसी, कार्डी सिंद्रभान सिंह, अनुभव और ऋषभ जी हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर, ममता और कीर्ति हमारे साथ हैं। अगला संदेश संजय डिंगे नमन जी का बागपत उत्तर प्रदेश से है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन श्रीनिवास, सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जॉइंट रिक्वेस्टो जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ हैं। मेरठ केंद्र से दिग्दर्शन जी का एक और संदेश है। संदीप मकर ज्योति जी जालंधर से हमारे साथ हैं। फारूक अली खान जी हमारे साथ हैं। भरत कुमार जी हैं। और ये जो संदेश है ये तुलसी मस्किन जी का एक और बिहारी कॉलोनी से पहुंचा है। पारगन मुल्तानी राना से निमोहन उषा चिल्लू नायक जी हमारे साथ हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर निर्वला जी हमें सुन रहे हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है। कुछ और भी संदेश हैं जिन्हें हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन आपको अभी कहीं जाना नहीं है। 3 बजे आपका फेवरेट प्रोग्राम मैटिनी मेलेडीज भी मैं लेकर आने वाली हूं। बहुत ही खूबसूरत से उसमें गीत हैं, तो इसीलिए और साथ ही साथ एक सवाल भी रहेगा, तो तैयार रहिए कागज और कलम लेकर उस सवाल का जवाब देने के लिए। और अब जानते जाते हम एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए छोड़े जा रहे हैं रफी साहब की आवाज में। और उम्मीद करते हैं कि आज जो हम सितारा चुनकर लेकर आए थे आपके लिए, वो उसके बारे में जानकारी, उनके गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। 3 बजे मैटिनी मेलेडीज में मुलाकात होगी। तब तक इस प्रोग्राम से अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

डीडी फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। इस प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है, आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में चंद वनक में हम आपकी नजर करना चाहेंगे जिनके मौसीकी तरतीब दी उस खातून ने जिसे हिंदुस्तानी फिल्म की तीसरी खातून मौसीकार कहा जाता है। उससे पहले जद्दन बाई और सरस्वती देवी थी और ये तीसरा नाम है उषा खन्ना का। आज उनका यौम पैदाइश है। 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में वो पैदा हुई और कमर्शियली अगर कामयाब मौसीकारों की बात की जाए खातून के तौर पर तो वो बहुत कामयाब रही। दिल देखे देखो